आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद के सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से

0: 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाजी वाडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बँड 101.5 मेगाहर्ट्सवर आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर आपण ऐकत आहात आकाशवाणीचं अमरावती केंद्र। श्रोतेहो, सकाळचे 6:05 झाली आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत भक्ती संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए। भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों की राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार की निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
2: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
3: दूर दूराज गाँव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत गाँव के युवा लोगों के लिए।

0: स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव के महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
1: ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही है। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर सीमावर्ती गांवों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गांवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
2: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़ खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशी हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: गालिम लोशन,
4: गालिम लोशन, गालिम लोशन, गालिम लोशन, वो है गालिम लोशन।
3: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग गालिम लोशन।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल्य संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूची कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं की एमआरपी में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मधुरंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मधुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
3: हूती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय

0: नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-247-1234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीथ सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे की फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आए, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाए। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आए देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5 लाख करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से छिन गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा, मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट

जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश के सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आज जरीन दारूवाला यानी जरीन शर्मा का दिवस है, इन्हें हम याद कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन जरीन दारूवाला का जन्म हुआ था। आज के दिन इनका नाम इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि ये सरोद जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान वाद्य पर महारत हासिल करने वाली शुरुआती महिला कलाकारों में से एक है। यह बहुत सुंदर सरोद वादन किया करती थी। इन्होंने मैहर और ग्वालियर घराने से तालीम ली। वादन में गायकी अंग और द्रुत तंत्रकारी का एक अनूठा संगम प्रस्तुत किया। सिनेमा में अगर इनके योगदान को याद किया जाए तो मदन मोहन, नौशाद और खयाम जैसे संगीतकारों के साथ पाकीज़ा सहित कई सारी फिल्मों में पार्श्व संगीत में सरोद वादन का कार्य इन्होंने किया। इसके साथ ही ये अपने पति सितार वादक पंडित अशोक शर्मा जी के साथ में देश विदेश में कई सारी प्रस्तुतियां भी इन्होंने दी। 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी यह सम्मानित रही हैं। याद करते हैं उन्हें और सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे ये गीत बर्फी फिल्म से। श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज ने इसे गाया, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा और प्रीतम ने संगीत दिया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम कोरोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनके जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। किसी ने सही कहा है कि चिंता करने से क्या फायदा, अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर बस मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना वह तोहफा है जो बिना खर्च किए दिया जा सकता है और पाने वाले की पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो फिर हमारे पास दिन की शुरुआत करने के लिए केवल एक चीज बचती है, वह है मुस्कुराना। तो मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत कीजिए और आधी सफलता तो यही मिल जाएगी।

हम सुन रहे थे रॉकस्टार फिल्म से यह गीत मोहित चौहान एआर रहमान की आवाजों में। इशात कामिल ने इसे बोल दिए और एआर रहमान के संगीत के साथ सुना हमने यह गीत। आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में हम सुनते हैं नए गीतों को और उसके साथ याद करते हैं कुछ विशेष लोगों को। आज का दिन एक बार और विशेष हो जाता है क्योंकि आज के दिन जन्म हुआ उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास का। ये उड़ीसा के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और साहित्यकार थे। उन्हें उड़ीसा का रत्न यानी उत्कल मणि कहा जाता है। इन्होंने 1909 में साखी गोपाल में गुरुकुल शैली की प्रसिद्ध सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की, जहां पर चरित्र निर्माण और राष्ट्रप्रेम की शिक्षा दी जाती थी। 1919 में उन्होंने द समाज समाचार पत्र की शुरुआत की, जो जन जागरण का प्रमुख माध्यम बना और आज भी उड़ीसा का प्रतिष्ठित दैनिक है। इसके साथ ही वे उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जेल भी गए थे। बाढ़, सूखे, महामारी के समय उन्होंने पीड़ितों की निस्वार्थ सेवा की। वे लाला लाजपत राय की संस्था सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी रहे। जेल में रहते हुए उन्होंने बंदिर आत्मकथा, कारा कविता और धर्मपद जैसी प्रमुख कृतियां भी लिखी। उनका पूरा जीवन त्याग, लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा और 50 वर्ष की आयु में 1928 में आपका निधन हो गया। हम आपके जन्मदिवस पर आपको हमारी स्वतंत्रता के लिए, आपके किए गए कार्यों के लिए याद करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म सिंघम से सुखविंदर सिंह की आवाज में, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, अजय अतुल ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता वायु तत्व, फिर होता आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत, मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आइए चलते हैं चित्रलोक के अंतिम गीत की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, और नृत्य से अच्छा व्यायाम क्या हो सकता है? तो मन करे तो सुनिए ये गीत और साथ में ताल से ताल मिला लीजिए।

हम सुन रहे थे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का यगी, सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और निताली की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल और अमित त्रिवेदी ने इसे संगीतबद्ध किया। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चित्रलोक कार्यक्रम में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है दारा दारा दारा दारा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दारा

0: अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर, विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार

संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों में रंग है भारतीयता का, वाद्यों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग सुनाई देता है रविंद्र जैन की धुनों में। गीत की भावभूमि चाहे जो हो, रविंद्र जैन का संगीत उस मूड और दृश्य के साथ न्याय करता है। इसीलिए गीत को पर्दे पर न देखें तो भी उसे सुनते हुए हम उसका भरपूर आनंद

28 फरवरी सन 1944 को अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन को युवावस्था से ही संगीत में रुचि थी और वो भक्ति संगीत की रचनाएं गाया करते थे। संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने ली पंडित जी एल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम से। रविंद्र जैन की रचनात्मक सक्रियता का एक लंबा समय बीता कोलकाता में और फिर संयोग बना मुंबई आने का। सन 1972 के जनवरी महीने में रविंद्र जैन ने बतौर शुरुआत की स्वतंत्र रूप से संगीत देने की। फिल्म जगत में अपने करियर का पहला गीत उन्होंने महान गायक मोहम्मद रफी के स्वर में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म रिलीज न हो पाई। खैर, नसीब का पासा पलटा और 80 के दशक में रविंद्र जैन को उन फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला जो कामयाब होने के साथ साथ बेहद लोकप्रिय भी हुई। उस दौर की ये मशहूर फिल्में हैं चोर मचाए शोर।

रविंद्र जैन की प्रतिभा इस मायने में दूसरे संगीतकारों से अलग है क्योंकि रविंद्र जैन फिल्मों में संगीत देने के साथ साथ गीत भी लिखते रहे और उन्होंने कई गीत गाए।

रविंद्र जैन संगीत के मर्मज्ञ तो थे ही, भाषा और व्याकरण पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उनके संगीत में विशुद्ध भारतीय रंग था, इसलिए उसमें भारतीयता की आत्मा झलकती है। रविंद्र जैन उर्दू शायरी और कविता के गहरे जानकार थे। एक उम्दा संगीतकार होने के लिए ये जरूरी भी है। वो भारत की सांस्कृतिक धार्मिक लोक परंपरा की गहरी समझ रखते थे, इसीलिए विषयानुकूल संगीत सृजन करने में उन्हें महारत हासिल थी।

रविंद्र जैन की कई धुनें ऐसी हैं जो जब भी सुनाई पड़ती हैं अपने जादुई असर से हमें बांध लेती हैं। उनके शब्दों में, गीतों में कभी भी ओछापन या सस्ती तुकबंदी नहीं रही। रविंद्र जैन किसी भाव की मर्यादा क्या होगी इसके प्रति सजग थे। उनके गीतों में लालित्य है, भाषा और भावों का सौंदर्य है, और सौंदर्य है आंचलिकता का।

0: व्याकरण की मर्यादा तोड़ते, पहचान के लिए छटपटाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भौंडे फूहड़ प्रयोगों में, सस्ती तुकबंदियों में करहते, शिष्ट से अशिष्ट होते, चीखते चिल्लाते, शोर करते और स्मृतियों से स्खलित होते गीतों की भीड़ में रविंद्र जैन के रस भरे, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण गीत लगातार हमें मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं।
1: ओ ठंडे ठंडे पानी

रविंद्र जैन ने एक ओर जहां फिल्म जगत के प्रतिष्ठित बैनर राजश्री की कई स्तरीय फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा, तो वहीं उन्होंने शोमैन राज कपूर के प्रतिष्ठित बैनर की फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

रविंद्र जैन की संगीत प्रतिभा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी परिधि और विराट थी। रविंद्र जैन ने गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, भोजपुरी, बांग्ला, उड़िया, राजस्थानी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी संगीत दिया। इससे पता चलता है कि क्या थी उनकी प्रतिभा की ऊंचाई। हिंदी सिने संगीत को गायक येसुदास का अद्भुत स्वर मिला रविंद्र जैन जी के ही कारण। रविंद्र जैन गायक येसुदास को भारत का स्वर कहते थे। येसुदास जी ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में गाए कुछ बेहद लोकप्रिय और यादगार की

0: आज से पहले
1: संगीत और अपना काम रविंद्र जैन के लिए पूजा की तरह था। फिल्म सौदागर के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इस हृदय विदारक समाचार के मिलने के बाद भी रविंद्र जैन पूरे समर्पण से रिकॉर्डिंग करते रहे। भीतर से बहुत विचलित, किंतु बाहर से वो यूं प्रदर्शित करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिल्म सौदागर रविंद्र जैन के सुरीले संगीत का एक और उदाहरण है।

फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने कई गैर फिल्मी रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया। इनमें भक्ति रचनाओं के अलावा कई दिलकश गजलें भी शामिल हैं। रविंद्र जैन ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अनेक लोकप्रिय धारावाहिकों को भी अपने संगीत से संवारा। इनमें से कुछ के नाम हैं अलिफ लैला, इतिहास की प्रेम कहानियां, लवकुश, दादा दादी की कहानियां और रामायण।

कुछ प्रसिद्ध बैल कृतियां हैं महालक्ष्मी, दुर्गा, नृत्य मालिका, रामायण, कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण। रविंद्र जैन के संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं नदिया के पार, सौदागर, चित्तचोर, गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तपस्या, पहेली, हिना, राम तेरी गंगा मैली, पति पत्नी और वो, फकीरा और विवाह।

एक टेलीविजन चैनल के संगीत कार्यक्रम में उन्होंने महागुरु का दायित्व भी संभाला था। उनकी शायरी का एक दीवान भी प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था उजालों का सिलसिला। उनकी जीवनी का शीर्षक है सुनहरे पल। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से साहित्य और संगीत में अपने अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी जीवन संगिनी बनकर आई दिव्या जैन। रविंद्र जैन जी के सुपुत्र का नाम है आयुष्मान। 9 अक्टूबर सन 2015 को संगीत के साधक रविंद्र जैन ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रविंद्र जैन सदैव याद किए जाएंगे अपने मधुर संगीत के लिए। मीठ

0: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन पर केंद्रित ये कार्यक्रम। प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: स्वरसंवाद कार्यक्रमात आपला फोन लागलाय. आपण कोण बोलत आहात?
1: हा नमस्ते ताई. नमस्ते.
0: नमस्ते.
1: बहुत इंतजार के बाद और बहुत दिनों के बाद पहली बार हमारा कॉल लगा है. हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं. परमणि से ताई.
0: रहीम खान पठान.
1: जी हाँ जी हाँ. पहली बार हमारा फोन लगा है अमरावती आकाशवाणी को ताई. बड़ी खुशी हो रही है हमें.
0: अरे वाह. जब कोई श्रोता ऐसे कहता है कि हमारा आज पहली बार फोन लगा है तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा श्रोता परिवार इतना बढ़ रहा है.
1: पहली बार फोन लगने के बाद तो खुशी होने वाली है क्योंकि देखिए अब हम तो पुराने श्रोता है. हम तो आकाशवाणी रेडियो का हमें सबसे क्षण बोले सिर्फ रेडियो है बस.
0: अच्छा. अरे वाह, बहुत खुशी है हमें भी. तो रहीम जी, आप करते क्या है?
1: देखिए ताई, हम ऑफिस बिल्डिंग वर्कर का काम करते हैं परवनी में. यानी घर बनाना, मकान बनाना, मस्जिद बनाना, मंदिर बनाना या वाटर टैंक बनाना, सभी जितने भी आरसीसी काम होते हैं कांक्रीट में.
0: हाँ.
1: वो हम ही करते हैं ताई.
0: अरे

0: तो कारीगर हो।
1: जी हाँ जी हाँ, देखिए हर एक इंसान को ऊपर वाले ने काम लगा वाला है, चाहे छोटा रहो बड़ा रहो। दुनिया में कहते हैं ना कि बेकारी से बेजारी भली है, यानी बेजारी जो होती है
0: हाँ।
1: तो इसके ऊपर हमें एक शेर याद आ गया है सर,
0: इरशाद।
1: आसमान में चमकता है तारा, अंगूठी में चमकता है हीरा, माँ की याद आती है तो आंखों में आती है धारा। जीवन में कुछ ना कुछ बनना है तो डर के नहीं भाग जाना है, देखा हुआ हर सपना पूरा करना है, अपने लक्ष्य पर पहुंचना उसी को जीवन कहना है। ऊंचे परिवार में जन्म लेना ये इंसान के हाथों में नहीं है, लेकिन अपने परिवार का नाम ऊंचा करना ये इंसान के हाथों में है।
0: अरे वाह, बहुत खूब। लक्ष्य है जो ख्वाब हमने देखा है, जिस ऊंचाई पे हमें जाना है तो वो हमें ही पूरी करनी है। तो आपने बहुत अच्छा शेर सुनाया। रहीम जी, आपको आकाशवाणी अमरावती के कार्यक्रम कैसे लगते हैं?
1: देखिए भाई, अब हम तो 1975-77 से रेडियो के प्रोग्राम सुन रहे हैं और आज भी सुनते आ रहे हैं, क्योंकि
0: हाँ।
1: रेडियो की एक ऐसी खास बात है कि सबसे पहले अपने कान के पर्दे इतने बड़े हैं कि रेडियो भी आकाशवाणी चलती है और अपना काम भी चलता है। और दूसरी खास बात ये है
0: हाँ।
1: कि आप देखिए, मोबाइल का जमाना तेजी से बढ़ रहा है
0: जी।
1: और मोबाइल के जमाने में छोटा युवा बच्चा बूढ़ा हर एक बच्चे के या इंसान के हाथ में स्क्रीन टच का मोबाइल है। और हम देख रहे हैं, हम जो आपको बात कर रहे हैं, हमारे पास एक छोटा सा फोन है जिसे हम हमारे जरूरत पूर्ता कॉल करते हैं और कान को लगा के बात कर देते हैं। हम हेडफोन का भी इस्तेमाल नहीं करते। नौजवान बच्चे है हेडफोन हाथ में ले रहे हैं, आंखों के ऊपर पूरा स्क्रीन टच उनके मार रहा है, छोटे बच्चों के बड़े बच्चों के। अब इतनी बैटरी पिकअप होने के कारण हमारे अच्छे देश के अच्छे भविष्य यानी मोबाइल की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहे, उसके वजह से हमारे बच्चों को कम उम्र में चश्मा लगने की संभावना हो रही है।
0: जी जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है। आकाशवाणी ऐसा नहीं करती ना कि आपका हाथ रोक दिया और काम रोक दिया कि देखो मुझे, ऐसा नहीं करती। आकाशवाणी आपके मित्र के जैसे, आपके दोस्त के जैसे काम करती है ना।
1: हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि रेडियो अलग अपने माध्यम से चलता है, हमारे
0: हाँ।
1: कानों के पर्दे उसे सुन पाते हैं, हमारा काम चलता है और रेडियो के साथ में प्रसारण भी चलते हैं, हमें सब माहिती मिलती है।
0: रहीम जी, आज आपका फोन लगा है तो कौन सा गीत आपको आज सुनना है?
1: पुरानी फिल्म है मकसद, गाने के बोल है गुस्सा छोड़ दिल ना तोड़ गड़ना घड़ी घड़ी, ये गाना सुनना चाहेंगे।
0: अरे वाह, तो आज ये गीत आपके साथ कौन कौन सुनना चाह रहा है?
1: हमारे साथ में है खास तौर पे सैयद जलाल साहब है धारूर से, हमारे मोटे मारुति के पार्क के ऊपर बैठा रेडियो सुनते हैं अनंता नगर साढ़े बेलेश्वर टेलर, और हमारे बच्चे हैं नदीम खान इमरान खान और छोटे से नवाचे हैं शेख रहमान और आरान खान, सभी के साथ में परवनी में सुन रहे हैं भाई हम अमरावती आकाशवाणी का हेलो फोन इन कार्यक्रम।
0: अरे वाह, तो जरूर हम आपकी ये जो पसंद है आप तक पहुंचा रहे हैं। आप अपने परिवार जनों के साथ इस गाने का आनंद लीजिए।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही चुका है सुरीला सफर का कंसेप्ट क्या है। इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं एक इबारत, और उस इबारत से आपको शब्द चुनने होते हैं, गाने चुनने होते हैं, और अपनी टिप्पणियाँ, अपनी यादें, अपनी बातें साझा करनी होती हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं ने यादें, बातें साझा की हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं की है वो अपना मोबाइल उठा ले और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाए और टाइप करें अपनी बात। तो आज की इबारत हम आप तक पहुंचा देते हैं जो लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। दरवाजे पर कौन है? डाकिया। इस जमाने में डाकिया डाक लाया? हाँ। चिट्ठी? हाँ। क्या लिखा है? ख्वाब। साथ में है तोहफा। याद है बचपन में माँ पिता भाई बहन को चिट्ठी लिखते थे, कभी घर की खैरियत पूछते, कभी छुट्टियों में आने का वादा करते, कभी महबूब के नाम खत चुपके से लिखा जाता था, उसे किसी के हाथों पहुंचाया जाता था, रेडियो से गाने गूंजते, खत लिखते समरिया के नाम बाबू, और तेरा खत ले के सनम पाओ कहीं पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। लिखा है तेरी आंखों में, लिखे जो खत तुझे। इन गानों को नोटबुक में नोट किया करते थे, फिर कभी इन्हें पत्रों में लिखा जाता, कभी पत्रावली में भेजकर पढ़े जाने का इंतजार भी किया जाता था। आपने किया इंतजार? बहरहाल, तो फिर अपनी चिट्ठी वाली याद साझा करो ना। वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, तुमने तो एक बार बिना शब्द लिखे कोरा लिफाफा भेज दिया था। वो बोला, उसमें सारे शब्द थे, बस तुम्हें पढ़ने नहीं आया था, तुम्हें पढ़ने थे वो शब्द। और खत में शेरो शायरी वाला लम्हा, वो फिर खिलखिला दी। आज मोबाइल पर संदेश आते हैं, नीली टिक लगती है, जवाब भी आ जाता है, मगर वो खत की खुशबू, वो लिफाफे को बार बार खोलना, वो लिखावट में किसी को महसूस करना, किसी की छुअन को महसूस

0: करना सब कुछ कहीं पीछे छूट गया। दरवाजे पर अब डाकिया नहीं आता, मगर मन में आज भी किसी की चिट्ठी का इंतजार होता है। चिट्ठी आ जाए तो दौड़कर लगता है कि वो डाकिया सामने खड़ा है। तो बताइए दोस्तों, आज भी आप पत्र लिखते हैं? और पत्र में क्या कभी गुलाब का फूल भेजते हैं? बनाते हैं ग्रीटिंग कार्ड अपने हाथों से? ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं किसी खास मौके पर, जन्मदिन पर, दिवाली पर, दशहरे पर? और दशहरा तो करीब है ना, दिवाली भी करीब है, नए साल पर। तो कौन हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं आज के शब्द? अब तक तो आप बूझ ही चुके हैं, और इन शब्दों से जुड़े हुए गाने जरा बूझिए। लिखने से, डायरी लिखने से, किताबों में गुलाब के फूल रखने से, वो एक विद्या की पत्ती रखी जाती थी किताबों में, वो सब, वो सारी बातें आज याद कर डालिए और लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम शुरू करते हैं सिलसिला। देखिए ना, डाकिया डाक लाया है, सुनिए और जरा हमें बता दीजिए कि कौन है डाकिया और कौन है अभिनेत्री इस फिल्म में। फिल्म है पलकों की छांव में। तो समझ गए ना, बूझिए डाकिया कौन है, अभिनेत्री का नाम, और साथ में अपनी बातें यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai।
1: डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया।

दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी तेरवा आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारण तो तार। शादी का संदेशा तेरा है।

0: किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिख।

डाकिया डाक लाया भाई, किसके हाँ अभी भी डाकिया आते हैं और चिट्ठी ले आते हैं, हमारे घर तो आते हैं और हमें तो आज भी इंतजार रहता है चिट्ठियों का, पत्रिकाओं का, किताबों का। आपको इंतजार रहता है क्या? इंतजार कीजिए और आप कुछ ऐसा कीजिए कि डाकिया आपके घर आपके दरवाजे पर दस्तक दे। थोड़ी स्टाइल बदल गई है, इस गाने में डाकिया साइकिल से आ रहे हैं और लोग दौड़ रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, पैदल भी आते हैं, बाइक से आते हैं, ऑटो रिक्शा से आते हैं। बहरहाल इंतज़ार कीजिए तो डाकिया आया करेंगे, और अगर आपको लगता है कि हाँ चिट्ठियाँ आती रहें तो पहले आप तो लिखिए चिट्ठियाँ। किसको लिखते हैं आप चिट्ठी, और क्या आज भी कभी किसी मौके पर चिट्ठी लिखते हैं? कुछ खास त्यौहार हैं जहाँ पर बगैर चिट्ठी के

काम नहीं चलता है। जैसे कि राखी का त्योहार है, बहन भाई को चिट्ठी जरूर लिखती है, भाई बहन को चिट्ठी जरूर लिखते हैं, आप कब किन मौकों पर लिखते हैं? एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अतीत के गलियारे खोल दिए और मैं हॉस्टल की यादों में खो गई। कैसी चिट्ठियां सभी की आती थी और हम सब बेल बजाने का इंतजार करते थे, चिट्ठियां लेने के लिए उत्सुक रहते थे। जिनकी चिट्ठी नहीं आती थी वो निराश हो जाती थी। हॉस्टल वार्डन हमेशा आश्वासन देती थी कि कल जरूर पत्र आएगा। तो अब जरा बताइए कि ये जो इंतजार वाला लम्हा है, बहुत सारी फिल्मों में भी है, किस फिल्म में खत पढ़ने वाला दृश्य है, किस फिल्म में आपने देखी कोई फिल्म जिसमें कि पत्र का इंतजार हो रहा है? और वो गाने भी सुझाते चलिए, वो फिल्में भी सुझाते चलिए। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी थे इस फिल्म में, बहुत त्वरित जवाब दिया है। एक श्रोता ने शिकायत लिखी है, भाई पत्र में शिकायतें भी लिखी जाती थी, जैसे कि बहुत सारी बातें, अरे आपने तो चिट्ठी का जवाब जल्द नहीं दिया, इतने दिन हो गए और आप तो आए नहीं, और हमने कितना इंतजार किया, और भी बहुत सारी शिकायतें होती है। आप कौन सी शिकायत किया करते थे? हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि 2 बार डाला कमेंट लेकिन किसी को दिख ही नहीं रहा, शायद आपको भी नहीं दिख रहा है ममता जी। मैं क्या करूं, ऐसा 2-3 दिन में एक बार होता ही है। भाई हमें तो दिख गया, लेकिन शिकायत के अलावा कोई बात भी तो लिखिए कि हम श्रोताओं तक आपकी बात पहुंचा दें, चिट्ठी से जुड़ी हुई। एक श्रोता ने लिखा है कि तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम। फिल्म के इस गाने में नायिका चिट्ठी पढ़कर बेहद खुश है। कभी कभी किसी की चिट्ठी आने पर इस तरह की खुशी मिलती है और दरवाजे बंद कर ऐसे ही हाव भाव हुआ करते थे और किसी के सामने नहीं पढ़ना होता था, उसे छुपा कर ही पढ़ा जाता था, क्योंकि चिट्ठियां भावनात्मक लगाव से जुड़ी होती थी और आंखों को पनीली कर देती थी। तो बताइए जरा कि आपने कौन सा पत्र ऐसा पढ़ा है कि आपको छुपाने की जरूरत पड़ी, किसको लिखा था वो पत्र कि आपने छुपाया? हालांकि बहुत सारे पत्र छुपा कर लिखे जाते थे, बहरहाल चिट्ठियों में फूल भी भेजे जाते थे और गुलाब की पंखड़ी चिपकाई जाती थी और एक विद्यापति आती थी वो भी चिपका दिया जाता था जब कुछ पढ़ने लिखने की बात होती थी। आपने कभी गुलाब या कोई फूल चिपका कर भेजा है? जरा बताइए, ये तो फिल्म का नाम तो आप बूझ गए, सरस्वती चंद्र, इसमें कौन है हीरोइन का नाम पूछना है आपको, चाहे तो हीरो का नाम भी बता सकते हैं।

फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। बहुत सारे श्रोताओं से हमने पूछा कि भाई आपने भी कभी फूल भेजा था, तो अभी तक तो जवाब नहीं है, लेकिन अगर हाँ आपने कभी पत्र में फूल रखकर भेजा था तो ज़रूर बताइए। और फूल मुरझा जाते थे लेकिन उसकी खुशबू बाकी रहती थी। जब कभी कई साल बाद वो चिट्ठी निकाली तो उसमें मुरझाया हुआ फूल, लेकिन ऐसे लगता था वो ताजगी वापस लौट आई है, वो खुशबू वापस लौट आई है। हमने पूछा था कौन है हीरोइन, नूतन। सभी श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया, और मनीष और साथ में सुलोचना भी है इस फिल्म में। एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही लम्हों के बाद लाजवाब प्रस्तुति में सुरीला सफर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही शुरू होगा ममता जी द्वारा पूछे जाने वाले एक से बढ़कर एक दिलचस्प सवालों का सिलसिला। तो हम भी कमर कस के आपके पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो फिर दीजिए उत्तर फटाफट। और जब ये हम पहली पूछते हैं तो पहली का जवाब तो आप फटाफट दे ही देते हैं, साथ में ये भी बताते चलिए कि चिट्ठी आप अभी भी लिखते हैं या नहीं। किसका पत्र आपके नाम आया और बड़ा लंबा हुआ करता था पत्र, क्योंकि कई लोग पत्र लंबे लिखने के आदि होते हैं, कि जैसे किसी के घर में भाई होते हैं लंबा पत्र लिखते हैं, कुछ कविताएं भी उसमें लिख देते हैं, कुछ थोड़े से किस्से भी बयां कर देते हैं, बहुत तफसील से और फुर्सत से पत्र लिखते हैं। ऐसा कोई पत्र आपके पास है, संभाल कर रखा है, आपने कोई चिट्ठी संभाल कर रखी है तो ज़रूर बताइए। अब जो श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा पूछा जाने वाला पहला प्रश्न शायद यही होगा कि बताइए अपनी पहली बार सबसे पहले खत किसको लिखा था। क्या बात है भाई, ज़रूर बताइए। और अब दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि बताइए आपने विविध भारती में कभी कोई पत्र लिखा है। बिल्कुल, ये भी हम पूछ रहे हैं। और हमारी ओर से जो आप सवाल कर रहे हैं ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर बताइए, क्योंकि हमने तो विविध भारती के नाम पत्र लिखे थे, पत्रावली कार्यक्रम में शामिल भी हुआ था, तो आपकी कोई याद है तो ज़रूर साझा कीजिए। और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भी आप पत्र लिखते ही होंगे, तो वो भी आप बता सकते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गीत सुनाए जा रहे होंगे और हम भी आनंदित होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और शुरू से आखिरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि डाकिया जो खाकी वर्दी में होते थे, बरोठे की कुंडी खड़खड़ा कर जोर की आवाज लगाते थे, सारे घर के लोग सब काम छोड़कर घर के दरवाजे पर दौड़ पड़ते थे, किसकी चिट्ठी है, किसके नाम आई है, फिर डाकिया एक एक करके जो पोस्ट आती थी दे देकर चले जाते थे, फिर सब पहले चिट्ठी पढ़ते थे, बाद में बाकी काम, और बहुत अच्छी बुरी खबर देने का काम तार करता था। पति या घर के और आदमी जो बाहर काम करते थे तो पहली तारीख को मनी ऑर्डर का इंतजार बड़ी बेसब्री से होता था। वो हड़बड़ाहट, वो बेचैनी, वो सिर्फ एक डाकिया की वजह से ही संभव होता था। पर अब वो जमाना कहाँ, एक सेकंड भी नहीं लगते खबर पैसा और हालचाल आदान प्रदान करने में। बिल्कुल सही बात है, रक्षाबंधन में राखी हो या भाई दूज में टीका, सब डाकिया ही बाहर पहुंचाते थे, और डाकिया का बड़े बेसब्री से इंतजार होता था। डाकिया का लोग स्वागत करते थे उन्हें, गाँव में तो बाकायदा गुड़ की डली ले आते थे, गुड़ और पानी पिलाया करते थे, कई लोग दरवाजे पर अपने खाट बिछाकर उनका स्वागत करते थे। अगर कोई अच्छी खबर ले आते थे तो उनके साथ देर तक गुफ्तगू होती थी, फिर पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर सुनते थे पत्र। पढ़ने वाला कोई एक होता था, सुनने वाले सभी, और सबकी आंखें नम होती थी, कोई अपने आंचल से आंसू पोंछ रहा होता था, कोई रुमाल से। बहरहाल बहुत सारी यादें, आप अपनी यादें साझा कीजिए। और अब अगला गाना ये

अर्धांगिनी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, बसंत देसाई का संगीत था। और श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि हमें फिल्म का नाम नहीं पता, बता दिया हमने। और एक श्रोता ने लिखा है कि लंबा पत्र प्रेमिकाओं और पत्नी को लिखी जाती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अपने गर्लफ्रेंड को गुलाब फूल दिया और वो फूल एक दिन अपने पिता के सामने मिल गया, खोलते समय मैंने बुक में दिया था, अब वो मेरे साथ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्रों में फूल आदि चिपका कर देने की असफल कोशिश मैंने भी बहुत बार की है, मगर बदले में हर बार मेरे मुंह पर किसी न किसी का हाथ ही चिपका है। और एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठी न आने का दर्द बॉर्डर फिल्म में देखा था, और जब चिट्ठी आती है तो पढ़कर सुनाने का वाकया भी बड़ा मजेदार है। गाना बजता है, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, ये पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। सचमुच ये चिट्ठी वाली बातें और चिट्ठी वाले गाने बेहद मार्मिक हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो खुशबू से भरी चिट्ठियां महका देती थी, रोम रोम को संवेदनाओं से भरे शब्द कितने सुकून भरते थे, और हाँ, हर रोज 11 बजे पोस्टमैन का इंतजार सबको रहता था। और एक श्रोता ने बताया है कि उपन्यास गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी के उपन्यास से बनी फिल्म थी सरस्वती चंद्र। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ज्यादातर खत मामा जी को राखी पर भेजती थी और मुझसे लिखवाती थी। उसमें सबसे पहली लाइन होती थी, आदरणीय मामा जी, यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा करती हूँ वहाँ भी सब कुशल मंगल से होंगे, मुझे बहुत याद आता है वो सब। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं एक बंगालन हूँ, सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के पत्रावली कार्यक्रम में चिट्ठी लिखने के लिए मैं अपने आप बगैर हिंदी की कोई औपचारिक तालीम के हिंदी सीखी, वो भी विविध भारती सुन सुन कर। क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ज्यादा उस दौर में आने वाले हल्के पीले रंग का पोस्ट कार्ड और उसके साथ जवाबी पोस्ट कार्ड भी साथ में आते थे, जब पोस्ट कार्ड को अन्य व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। अंतर्देशीय पत्र जो नीले रंग का चारों तरफ से पैक हो जाता था, उसे दूसरा नहीं पढ़ सकता था। इसके अलावा बैरंग चिट्ठी, ये एक सफेद कागज पर लिखे जाने वाला अपनी व्यथा का पत्र होता था, जिसका पेमेंट पेनल्टी के रूप में जिसके पास पहुंचता था वो अदा करते थे। कई बार बहुत आर्थिक तंगी के कारण भी कुछ चिट्ठियां बैरंग आती थी, जो आपको अदा करना पड़ता था, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाम अभी भी पत्र आते हैं, वे बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने कार्य में बहुत ही कुशल हैं वो जो चिट्ठी पहुंचाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सगाई और शादी के बीच 6 माह का गैप होने के कारण हम दोनों का पत्रों का सिलसिला चला, वो चिट्ठियां हमने आज भी सहेज कर रखी, उस लिफाफे को हमने दिया है अमूल्य निधि और

0: 30 बरस हो गए, क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अमीन साहनी साहब को पत्र लिखा था, और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं अपनी बातें, अपने जज्बात। तो आप भी अगर आपने नहीं लिखा तो लिखिए, और जरा बताइए फिल्म का नाम और कौन है हीरो हीरोइन।
1: लिखे जो

ये गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन। शशि कपूर और आशा पारेख हैं और सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया है। इधर हमने सवाल पूछा नहीं कि उधर जवाब आने शुरू हो गए। वही साथ में अपनी बातें और यादें भी साझा करते चलिए कि किन के पत्र आपने संभाल के रखे हैं। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमने तो आज भी कुछ चिट्ठियाँ संभाल के रखी हैं, क्या आपने भी रखी हैं? वैसे जब ये बात आती है, संभाल के रखने की बात आती है, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब जगह नहीं बची है। भाई, बाकी चीज़ों के लिए आपके पास जगह है, लेकिन किसी की लिखी चिट्ठी के लिए जगह नहीं है। किसके पत्र आपके पास ज़्यादा आते थे, ज़रा ये बताइए। सहेलियों के पत्र, पिता के पत्र, पति का या फिर किसी और का? क्या एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे को पत्र लिखा है? कई बार एक ज़माना था जब लड़कियाँ बहुत

0: जल्द से घर से नहीं निकलने पाती थी तो वो पत्रों से अपनी बात एक दूसरे से अपनी सहेलियों से साझा करती थी। क्या आपने भी ऐसा किया है? एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पास मेरे पापा जी का पत्र है, अब वो नहीं है पर पत्र में उनकी यादें हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज छत्तीसगढ़ के एक डाकिये की याद आ गई जो ठीक 11 बजे आया करता था। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मैंने विविध भारती के नाम पत्र लिखे मनचाहे गीत में, अब तो पोस्टकार्ड आसानी से नहीं मिलते हैं और पत्र वाला डब्बा भी नहीं मिलता है, मतलब पोस्ट बॉक्स भी आसानी से नहीं मिलते हैं। भाई अगर शौक है तो विविध भारती के नाम तो आप पत्र लिख ही सकते हैं। वैसे भी अभी लंबी तादाद में श्रोताओं के पत्र आज भी आते हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो पहली बार और सिर्फ एक ही खत मेरी दीदी ने मेरे लिए भिजवाया था मेरी छोटी बहन के हाथों। वो खत आज भी मेरे पास है पर अब न ही मेरी दीदी मेरे साथ है न छोटी बहन। मैं जब भी उसे पढ़ती हूँ आंखें नम हो जाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपका खत मिला फिल्म शारदा रामेश्वरी पर ये फिल्माया गया हुआ है, मतलब जो मैंने पूछा था कि कोई फिल्म की सिचुएशन जहाँ पर खत है पत्र पढ़ा जा रहा है, हकीकत फिल्म में भी एक दृश्य आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात बहुत हंसी की है, मैं आप सबको लेकिन बताऊंगा। उस समय 16 बरस का रहा होऊंगा, मैंने एक लड़की को चुपके से एक पर्ची में कुछ लिखने के बाद उस पर्ची को किसी बच्चे के हाथों उस लड़की को देने के लिए कहा, लेकिन वो पर्ची लेकर उस लड़की की मम्मी को दे आया। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसे विषय को आज आपने छेड़ दिया है जिससे 90% श्रोताओं का अतीत जुड़ा हुआ है, अतः सभी अपने अतीत को खंगाल अनुभवों को साझा करने में जुटे हुए हैं, तो जरा जल्दी अतीत को साझा कीजिए क्योंकि अब घड़ी की ओर देखिए 1:30 हो रहे हैं, तो अब आधे घंटे और है आपके पास, जल्दी जल्दी अपनी अतीत की बातें साझा कीजिए विविध भारती।
1: नमस्कार, मी शैलेश मोहिते, राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। केंद्रीय पथकाचा राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त भागात पाहणी दौरा सुरू। सीजेपीच्या दिल्लीतल्या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली, नवी दिल्लीत पोहोचणाऱ्या बहुतांश रेल्वे गाड्याही रद्द। तामिळनाडू पुद्दुचेरी आसाम मधल्या पोटनिवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार आघाडीवर। अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांबद्दल अमेरिकेने केलेल्या वक्तव्यावर भारताकडून तीव्र शब्दात आक्षेप। आणि भारतीय वैमानिक स्मित मच्छार यांना इस्रायल सर्वोच्च नागरी शौर्य पुरस्कार देणार। आणि आता बातम्या विस्ताराने। मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकाने आज छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात देमणी शिवारात पाहणी केली। यावेळी शेतकरी विलास देवीदास शिंदे यांच्या शेतातील पाण्याअभावी करपलेल्या सोयाबीन पिकाची पाहणी करून पथकाने शेतकऱ्यांशी संवाद साधला। हे केंद्रीय पथक आज आणि उद्या बीड जिल्ह्याचा दौरा करणार आहे। गेवराई, बीड आणि पाटोदा तालुक्यातल्या दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करून शेती आणि पिकांच्या नुकसानीची हे पथक माहिती घेणार आहे। पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर उद्या दुपारी पथकाचे जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार असल्याचं आमच्या वार्ताहरानं कळवलं आहे। राज्यातल्या दुष्काळ जाहीर झालेल्या 265 तालुक्यांच्या व्यतिरिक्त आणखी 18 तालुक्यांमध्ये 5 पिकांचं 20% सर्वेक्षण ग्राउंड ट्रुथिंग करण्याचा शासन आदेश सरकारनं आज जारी केला। विविध निकषांमुळे या तालुक्यांचा समावेश दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये झाला नव्हता, त्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीनुसार राज्य सरकारने या 18 तालुक्यात दुष्काळ सर्वेक्षण करायचा निर्णय जाहीर केला। दिल्लीत जंतर मंतर इथं उद्या होणाऱ्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे। जंतर मंतरवर निदर्शनं किंवा इतर कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी किमान 10 दिवस आधी परवानगीचा अर्ज सादर करणं आवश्यक असतं। सीजेपीला यापूर्वीही जंतर मंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती, मात्र त्यांनी मार्गदर्शक तत्व आणि हमीपत्राचं पालन केलं नाही, त्यामुळे आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही असं दिल्ली पोलिसांच्या सह आयुक्त नुपूर प्रसाद यांनी आज वार्ताहरांशी झालेल्या बैठकीत स्पष्ट केलं। सार्वजनिक सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता च्या कलम 163 अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश सध्या या भागात लागू आहेत। कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्या कोणावरही दिल्ली पोलीस योग्य ती कायदेशीर कारवाई करतील असं

0: प्रतिभावंत आणि कुशल परदेशी नागरिकांचं स्वागत अमेरिका करत राहील, मात्र H-1B व्हिसाचा मूळ उद्देश मागे पडला आहे असंही ते म्हणाले. या कंपन्यांवर त्यांनी केलेल्या आरोपांबाबतचे कोणतेही तपशीलवार निश्चय सरकारने दिलेले नाहीत. मायक्रोसॉफ्टनं हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. भारतीय वैमानिक स्मित मच्छार यांना इस्रायलचा सर्वोच्च नागरी शौर्य पुरस्कार दिला जाणार आहे. इस्रायलचे राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग यांनी आज ही घोषणा केली. कॅप्टन मच्छार यांच्यासह दुबईत ते तेल अवीव दरम्यानच्या विमानातून प्रवास करणाऱ्या अन्य 5 जणांनाही हा शौर्य पुरस्कार प्रदान केला जाईल. दरम्यान कॅप्टन मच्छार यांच्या सन्मानार्थ केरळमध्ये भारतीय टपाल विभागातर्फे एक विशेष टपाल तिकीट जारी केलं जाणार आहे. गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यात खावडा गावाजवळ आज पहाटे झालेल्या अपघातात 7 कामगारांचा मृत्यू आणि 20 पेक्षा अधिक जण जखमी झाले आहेत. ट्रक आणि टेम्पो यांच्यात ही धडक झाली. हे सर्वजण कामगार होते. आणि ठळक बातम्या पुन्हा एकदा. केंद्रीय पथकाचा राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त भागात पाहणी दौरा सुरू. CJP दिल्लीतल्या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली. नवी दिल्लीत पोहोचणाऱ्या बहुतांश रेल्वे गाड्याही रद्द. तामिळनाडू पुद्दुचेरी आसाममधल्या पोटनिवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार आघाडीवर. अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीयांबद्दल अमेरिकेने केलेल्या वक्तव्यावर भारताकडून तीव्र शब्दात आक्षेप. आणि भारतीय वैमानिक स्मित मच्छार यांना इस्रायल सर्वोच्च नागरी शौर्य पुरस्कार देणार. याबरोबरच आकाशवाणी मुंबई केंद्रावरचं हे राष्ट्रीय बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया दुपारी 3 वाजता आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक बातमीपत्रात. नमस्कार.
1: शक्ति फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत था, अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया था ये गाना. सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है इसका भी. एक श्रोता ने लिखा है कि जब खत की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा तुझे कागज वही हमने लिखा कुछ भी नहीं. क्या बात है भाई. अब जमाना और है, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए ही मोहब्बत का इजहार हो जाता है, लेकिन उसमें वो रूह नहीं. आज भी हम खत पर विश्वास करते हैं. माँ पिता का पत्र, प्रेमी या किसी सहेली का पत्र, क्योंकि उन पत्रों के शब्दों में होती है आत्मीयता. लिखावट से पता चलती है प्रेषक की तन्मयता, और पत्र पढ़ते समय पत्रों में से झांकता है चेहरा लिखने वाले का. क्या बात है भाई. अब तो मोबाइल के जरिए अगर प्रेम का इजहार होता है तो तुरंत इमोजी के जरिए पता चल जाता है, या तुरंत शब्दों के जरिए, वाक्यों के जरिए. तब जब पत्र लिखे जाते थे, प्रेम पत्र, तो इंतजार होता था. इंतजार में रात भर आंखें तकती थी कि कब वो उस पत्र का जवाब आएगा. कभी ऐसा भी अनुभव आपके साथ हुआ होगा. और ये इंतजार होता था कि लिखने वाला कब लिखेगा, क्या लिखेगा, जाने कौन सी बात होगी, ये भी जिज्ञासा हुआ करती थी. एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं होते थे, उनमें लिखने वाले का प्यार, आशीर्वाद, भावनाओं और स्नेह का स्नेह छिपा होता था. उन पत्रों का इंतजार और उन्हें पढ़ना भी कितना खूबसूरत होता था. एक श्रोता ने लिखा है कि खत में एक ऐसा शब्द है जो बरसों जैसे लगते हुए इंतजार की घड़ियों को खत्म कर देता जरूर है, पर आगे इंतजार को बहुत पीड़ादायक बना देता है. खत को लिखते हुए हर उस शख्स के उंगलियों का स्पर्श, उनके ख्वाब, उनके भाव और प्यार, सभी उस लिफाफे में बंद होकर हम तक पहुंचाया जाता रहा है, जिसके आते ही धड़कनें बढ़ जाती थी. सचमुच कुछ पत्र पढ़ते हुए दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थी. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या आपने इस गाने के बारे में सोचा था. और हाँ, आगे कुछ श्रोता अगर गाने सुझा रहे हैं तो वो गाना हम आपको सुनवाएंगे. सुनिए ये गाना और बताइए कौन है हीरो, कौन है हीरोइन.

फिल्म थी आए दिन बहार की, आशा भोसले की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया। आशा पारिक हीरोइन होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि डाक प्रणाली का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि इसका विकास प्राचीन सभ्यताओं के साथ धीरे धीरे हुआ है। और बहुत सारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक गजल याद आती है, प्यार का पहला खत लिखने में देर तो लगती है। सच में ऐसा ही होता था, कई पन्ने फाड़कर खत लिखे जाते थे, सचमुच संतुष्टि नहीं होती थी दोबारा तिबारा। अब तो ऐसा धीरज बचा ही नहीं है, जैसे तैसे एक पत्र लिख दिया बस काफी है, फिर ये समझ में नहीं आता दो लाइन लिखने के बाद कि अब क्या लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र की शुरुआत हम करते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु। बहुत सारे लोग ऐसे लिखा करते थे, हम भी ऐसे ही शुरुआत करते थे, पहले सामने वाले का नाम और संबोधन, प्रणाम नमस्कार, उसके बाद ये। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे दादा ने अपने घर के एड्रेस पर शुभकामना का पोस्ट कार्ड भेजा था ताकि पोस्ट कार्ड पर जो तारीख का स्टैंप लगाया जाता है ये प्रूफ अपने पास रहे। क्या बात है भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने हेलो फरमाइश आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में अपनी बातचीत और अपनी पसंद शामिल होने पर हर बार व्यक्तिगत आभार के पत्र लिखे थे, पर हाँ एक बात जरूर की थी कि किसी महिला प्रस्तुतकर्ता को पत्र लिखा था, तब पते में उनका नाम नहीं पर अन्य कोई साथी उद्घोषक का नाम लिखकर उनको पहली लाइन में विनती की थी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब खत की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक इस रक्षाबंधन पर हमने 100 से ज्यादा पोस्टकार्ड अपने सैनिक बंधुओं को लिखे और राखी भेजी थी। क्या बात है भाई, सलाम करते हैं आपकी इस बात को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहली बार जब पत्नी का खत मेरे कॉलेज के पते पर आया, दरअसल शादी के कुछ महीने बाद पत्नी की विदाई हो गई, वे मायके चली गई थी, मैं कॉलेज में पढ़ने में व्यस्त हो गया। अचानक एक दोस्त ने एक खत एक दिन दिया, तुम्हारा खत मेल काउंटर पर रखा है, ले आता हूँ। खत को ले जाकर लाइब्रेरी में कोने में बैठ कर पढ़ने लगा, तमाम शायरी दोहे पढ़ते ही मन ही बदल गया, उनकी याद ने माहौल ही बदल दिया। और भी बहुत सारी बातें लिखी है इन्होंने। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय बहुत ही बढ़िया लगा, सुरीला सफर का आज, खतों की बात, मुझे तो गाने भी बहुत सारे याद आ रहे हैं और गानों की फेहरिस्त इन्होंने लिखी है। अब चलिए अगला गीत सुनते हैं, बूझिए जरा फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम भी बूझना है आपको।

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और संगीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी दुल्हन और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सिर्फ नियुक्ति पत्र ही संभाल के मैंने रखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है निदा फाजली का शेर, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज का सुरीला सफर बहुत बढ़िया लग रहा है। खतों की बात है, मुझे बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं और गानों की लिस्ट इन्होंने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का प्रोग्राम खास है क्योंकि बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि हम मेरे घर आ रहे चिट्ठी डाकिया डाक लाया, एक डाक और डाकिया एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों को देखकर चेहरे पर चमक आ जाती थी। और मेरे घर आ रही चिट्ठी आए या ना आए, लेकिन हमें इंतजार रहता था। डाक वाले का पूरा शहर सम्मान करता था। अब वो जमाना गुजरे जमाने में सालों में तब्दील हो गया। दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड, शादी के निमंत्रण, कुशलता का समाचार, कोई अन्य खबर, नौकरी से संबंधित सूचनाओं के पत्र भी, और भी बातें, बहुत कुछ यादें ताज़ा हो गई जब लोग चिट्ठी लिखने को कहते और आई चिट्ठी को पढ़कर सुनाया करते थे। तो ऐसी तमाम चिट्ठियां होती थी जब, और ये भी आपको याद होगा कि अड़ोस पड़ोस की महिलाएं जब, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जिन्हें पत्र पढ़ने नहीं आता था, वो पत्र लेकर आती थी घर में और कहती थी कि जरा ये पत्र पढ़कर सुना दो। और उसमें कई बार मजाक भी होता था, बच्चे शरारत भी करते थे, चिट्ठी लेकर भागते थे इधर उधर, वो दादी काकी दौड़ती थी पीछे पीछे, वो भी एक अलग आनंद था। एक श्रोता ने

है कि क्या वो खूबसूरत दौर था जब किसी अपने के नाम चिट्ठी लिखना अपने ही मन के आंगन में उतरने जैसा हुआ करता था। कलम के नोक से कागज पर उतरते शब्दों में न जाने कितनी भावनाएं घुल जाया करती थीं। शब्द केवल पढ़े नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे। आज तो डिजिटल युग में उंगलियों के एक स्पर्श से संदेश पहुंच जाते हैं, परख झपकते ही जवाब आ जाते हैं, लेकिन वो चिट्ठी वाली स्पर्श कहाँ मिलती है। चलिए अब सुनिए ये गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम और गीतकार और संगीतकार का नाम भी पूछिए।

हिना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था नक्शलालपुरी और संगीतकार रविंद्र जैन, और आज उनकी याद का दिन है रविंद्र जैन साहब का। तो आज का ये प्रोग्राम का आखिरी गाना उन्हीं के नाम था। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है और अभी भी टिप्पणियां आ ही रही श्रोताओं की, पढ़े देते हैं, थोड़ा सा वक्त है। चिट्ठी लाने वाले डाकियों को हर बड़े त्योहार जैसे होली दिवाली पर

0: skipper Shreyas Iyer century, powering the hosts to victory. The Intermeteorological Department IMD forecast heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. Heavy rainfall is also likely to prevail over South Interior Karnataka and Uttarakhand during the day. IMD said Lakshadweep, Bihar, Andhra Pradesh, East Madhya Pradesh, Jharkhand, Odisha, West Bengal and Sikkim are also expected to witness thunderstorms, lightning and gusty winds today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi may remain closed from 9 p.m. today till tomorrow. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stand cancelled at source stations. Prime Minister Narendra Modi to participate in valedictory session of Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi this evening. All India NR Congress wins the Tan Chowdhury Assembly constituency in Puducherry, counting on 4 Assembly seats and 1 Lok Sabha seat underway. Ministry of External Affairs clarifies US suspension of PERM applications does not affect H-1B visas. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H-1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और

सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे, जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्टोरेंट में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के दो दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपए से घटकर 8 रुपए से भी कम रह गई है।
2: 550 million users. भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
3: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल है। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी के EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी

0: वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची एच HH1 और अनुसूची X में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंग अनुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर

0: जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्र, कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में राजा मेहदी अली खां का लिखा एक गाना। फिल्म थी वो कौन थी और संगीतकार थे मदन मोहन। सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली

0: क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
0: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: देंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
5: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
4: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे थे फागुन फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कमर जलालाबादी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियां, सृजन की बातें साझा

नागिन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रेम धवन का लिखा गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में। फिल्म थी सावन।
1: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।
3: तौबा तेरा जलवा तौबा।

0: अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश के सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं सोनिका बात कर रही हूँ मैडम, हिसार हरियाणा से।
0: सोनिका जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपका शहर कैसा है, वहाँ की क्या खास बात है?
1: जी शहर मेरा बहुत अच्छा है मैडम, साफ सफाई बिल्कुल रहती है वहाँ पे।
0: जी
1: वैसे मैं गांव से हूँ।
0: अच्छा,
1: वैसे जिला तो मतलब मेरा हिसार है, गांव में रहते हैं मैडम। वैसे
0: गांव तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े हरे भरे खेत होते हैं, है ना?
1: जी मैडम,
0: तो आपके यहाँ क्या होता है काम?
1: हमारे यहाँ पे मैडम फसल में धान वगैरह होते हैं, और मैडम नरमा की कपास होती है,
0: अच्छा,
1: गेहूँ भी होती है मैडम। जी
0: जी दाल गेहूं वगैरह होता है।
1: मैडम,
0: और सोनिका जी, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके दादी बाबा या मम्मी पापा की यादों को ताजा करने वाले हैं। आपने जो वक्त गुजारा है उन लोगों के साथ में, तो कुछ उनकी यादें, किस्से, कहानियां, कुछ सीख, वो अगर आपको याद है तो आप हमें बताइए।
1: जी दादा दादी तो मैडम मैंने देखे नहीं,
0: जी
1: ये पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। पापा
0: जी
1: भी एक्सपायर हो चुके और मम्मी है भी फिलहाल। तो
0: तो मम्मी से आपने क्या क्या चीजें सीखी?
1: खाना बनाने में जो डिश होती है मैडम वो सीखी
0: जी
1: मैडम, जैसे आलू के परांठे है, मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाती है मैडम, उसी से मैंने सीखा मैडम। मतलब मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनाती हूँ मैडम आलू के परांठे।
0: क्या बात है। और सोनिका जी, ये बताइए कि आपको भी कुछ कढ़ाई कशीदाकारी का शौक वगैरह रखती हैं क्या आप?
1: नहीं मैडम, मैं ये नहीं करती, जैसे मैं ग्रुप में काम करती हूँ मैडम। हरियाणा में जैसे एक स्कीम है NRLM की तरफ से, तो उसमें जैसे 10 लेडीज होती है, 10 लेडीज इकट्ठा करके उनका समूह बनाते हैं हम,
0: जी
1: और उस समूह में जैसे लेडीज को बचत करना सिखाते हैं। जैसे हर महीने वो 100 रुपए जमा करे या 200 रुपए जमा करे, उनका एक अकाउंट खुलवा देते हैं मैडम किसी नाम के, तो उसका अकाउंट बैंक में खुलवा देते हैं। और बैंक से अगर लेडीजों को जरूरत होती है पैसों की तो उनका मतलब लोन वगैरह भी करवा देते हैं मैडम। मैं
0: क्या
1: ये
0: बात
1: काम करती मैडम,
0: जी।
1: कढ़ाई बुनाई का नहीं करती।
0: बस सोनिका जी, जो आप काम करती हैं वो तो बहुत अच्छा है कि आप महिलाओं की मदद करती हैं, इस तरह से बचत भी करवाती हैं, खाते भी खुलवाती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती हैं।
1: मैडम हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी यूपी में अमेठी जिले में।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमारे विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैं मैडम सुबह से सुनती हूँ सखी सहेली और हेलो सहेली, तो मैडम फोन कार्यक्रम तो सुनती हूँ, और जैसे 1 बजे वो कमेंट वाला फेसबुक वाला आता है ना,
0: जी जी जी
1: वो भी कार्यक्रम मैडम सुनती हूँ,
0: क्या
1: और उसमें
0: बात,
1: कमेंट भी करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट भी करती है। और सोनिका जी, आपको
1: जी
0: कुछ गाने वाने का भी शौक है क्या?
1: गीत मैं सुनती रहती हूँ मैडम, ज्यादातर ओल्ड गीत ही पसंद है मैडम।
0: तो आज जो आप मुझे गाना बताएंगी कि येलो सैली में आप ये गाना सुनना चाहती हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए तो मजा आ जाएगा।
1: एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी, यही गीत सुना दीजिए।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना सोनिका जी।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? जी
1: हाँ मैम, मैं मरका खंडा से जिला गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: आपका क्या नाम है?
1: वो मिंद्रा नोनारे।
0: तो उमिंद्रा जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए अपने बारे में कुछ मन की बातें।
1: हाँ मैम, हम ग्राम सालेकसा तहसील में रहते हैं।
0: जी
1: सालेकसा से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव है
0: जी
1: और
0: और
1: हम खेती किसानी का काम करते हैं मैम।
0: अच्छा, खेती किसानी में आपने खेत में क्या बोया है इस समय?
1: हमने खेत में धान बोया है मैम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा है। तो यानी कि फिर आप उसको अपने लिए रख लेती होंगी कुछ, और कुछ भाग आप उसको बाजार में निकाल देती होंगी, बेच देती होंगी, है ना?
1: हाँ मैम, कुछ यानी आधी फसल बेचने के लिए रहती है और आधी फसल खाने के लिए घर में।
0: अच्छा, और बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में सास है, दो बेटे हैं और हम पति पत्नी दो जन हैं।
0: क्या बात है, यानी कि भरा पूरा परिवार है। और आज हम बात करने वाले थे कि अपने माता पिता की और दादी बाबा की, या आपकी सास ससुर हैं जो परिवार में, उनकी कुछ यादें जो आप बताना चाहेंगी, क्या आपने उनसे सीखा?
1: हाँ मैम, सीखा तो बहुत कुछ है, काम वाम सीखा है, कुछ खेती किसान का काम सीखे है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बड़ा सिखाता है और हम उस काम को अच्छे से सीख जाते हैं और करने लग जाते हैं, है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो आप अपने बच्चों को किस तरह से काम सिखाती हैं?
1: हाँ मैम, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं,
0: अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे?
1: एक फाइनल ईयर में है, एक फर्स्ट ईयर में है।
0: अच्छा, तो बताइए आप विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैम मेरे को हर लोग फरमाए सबसे अच्छा लगता है, और हेलो सहेली, सखी सहेली,
0: जी, क्या बात है।
1: मनचाही गीत,
0: अच्छा,
1: और सबसे फेवरेट प्रोग्राम हेलो सहेली और हेलो फरमाए।
0: क्या बात है, यानी कि आज आपके फेवरेट प्रोग्राम में आपकी कॉल लग गई है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो बताइए आज आप क्या गाना सुनना चाहती हैं?
1: मुकद्दर का सिकद्दर का, वो खाती रहती रे बिना बिछा जीना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? प्रिया
1: मैं प्रिया बोल रही हूँ, दिल्ली से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। तो बताइए अपने बारे में कुछ समय।
1: बस अपनी ऐसे ही प्राइवेट जॉब है,
0: अच्छा, तो किस तरह की आप जॉब करती हैं?
1: कपड़ों की दुकान है, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना।
0: जी जी
1: तो
0: जी यानी कि आप शॉप पे काम करती हैं, तो बहुत अच्छी
1: हाँ जी
0: बात।
1: हाँ जी हाँ जी, वेद भारती के
0: जी
1: सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं
0: एक
1: मुझे,
0: मिनट।
1: इतना पसंद है। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं रेडियो भी लेके आई एक नया।
0: अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनना पसंद करती हैं?
1: मैं सखी सहेली और जो प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं तो सारे ही, लगभग रेडियो चलता ही रहता है।
0: क्या बात है। तो अपने बारे में और बताइए कि आपकी पढ़ाई आपने कितनी करी?
1: पढ़ाई तो मैंने बीए बीएड सब कुछ किया हुआ है
0: बीए और बीएड भी कर रखा है।
1: जी।
0: तो बीएड करने के बाद आपने ही नहीं सोचा कि आप टीचर बनने के लिए आगे जाएं?
1: बहुत कोशिश की लेकिन जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे जा नहीं पाए। जी
0: कोई बात नहीं, आप जो काम कर रही हैं आप उससे खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात
1: बिल्कुल।
0: है ना? बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना अलका याग्निक का है, शायराना सी है जिंदगी की फजा।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं जयपुर से रहमाना बानो बोल रही हूँ।
0: रहमाना जी, आप जयपुर से बोल रही हैं, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपने बारे में, अपने शहर के बारे में बताइए, कैसा है आपका जयपुर शहर?
1: जयपुर बहुत अच्छा है मैडम, सब घूमने आते हैं यहाँ पे।
0: पिंक सिटी कहलाता है जयपुर।
1: हाँ तस्वीर बढ़िया है, आप भी आइए।
0: बिल्कुल, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा बस जयपुर घूमने आएंगे।
1: हाँ मैडम,
0: और बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं आप?
1: बस बच्चों को संभालना, घर का काम करना। हम 5 बहनें 1 भाई हैं।
0: जी, तो और आप क्या क्या करती हैं इसके अलावा? कुछ आप कढ़ाई वगैरह करती हो, कुछ ऐसा?
1: हाँ कढ़ाई भी करती हूँ, साड़ी भी करती हूँ, साड़ी पे सितारे लगाना,
0: जी
1: और कड़े जो होते हैं कड़ों पे सितारे लगाना, कड़े पहनते हैं ना
0: जी जी जी
1: चूड़ियों के साथ,
0: लाख
1: वो
0: के कड़े होते
1: लगाती
0: हैं
1: हूँ।
0: जो,
1: लाख के कड़े होते हैं जो, वो वाला काम करते हैं हम।
0: मुझे सुनकर के अच्छा लग रहा है कि रंग बिरंगे कड़े होते हैं और उनमें आप नग वगैरह
1: हाँ
0: लगाती हैं।
1: और मैडम फराकों में ना बटन भी लगाते हैं हम,
0: जी जी
1: कमीज होती है ना जो पहनने
0: जी जी
1: की, और क्या कहते हैं कुर्ते होते हैं उस पर बटन लगाती हूँ मैं, निशान लगा के। तो
0: क्या बात है, तो एक
1: जैसे
0: दिन में कितनी कमीजों में आप बटन लगा सकती हैं?
1: मैंने 1,000 फराकों में निशान लगाया तो मेरे
0: जी
1: 500 रुपए हो गए।
0: क्या बात है। और खाना वाना क्या बनाती हैं आप? अच्छा,
1: खाना ग्रीन स्टू बनाती हूँ,
0: मीठे में क्या बनाती हैं?
1: मीठे में खीर,
0: अच्छा, खीर, यानी किस चीज की खीर बनाती हैं आप?
1: शाम के दूध के और उसमें चावल डालते हैं मैडम।
0: अच्छा, चावल वाली खीर बनाती हैं, यानी कि
1: हाँ
0: तो उसमें मेवा वगैरह डाल के बड़ा स्वाद हो जाता होगा
1: हाँ
0: उसमें तो।
1: हाँ चाहे आप उसमें सवैया डाल लो।
0: हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा, मैं तो स्वाद आ गया यहाँ पर बैठे बैठे।
1: आप
0: बिल्कुल
1: आइए खिलाएंगे आपको पका के।
0: बिल्कुल, तो बताइए रहमाना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं, अपनी पसंद बताइए।
1: मैं किरांती फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
0: क्या बात है, अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो मैडम, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। मैं दुर्गा नाम है मेरा
0: दुर्गा जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये
1: जी। मैम,
0: बताइए कि और आप क्या करती हैं?
1: दोनों बच्चे जॉब करते हैं, हस्बैंड भी जॉब करते हैं।
0: जी
1: मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे रहती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा, और साथ में रेडियो भी सुनती जाती हैं?
1: हाँ, रेडियो चलते रहता मेरा, अभी बंद कर दिया मैंने
0: अच्छा, यानी कि आप हमसे बात कर रही हैं इसलिए बंद किया है।
1: जी मैडम।
0: अच्छा, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम जो आप सुनती हैं, उनमें से आपको कौन कौन से प्रोग्राम सबसे पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली आता वो सुनती हूँ मैं, और रोज सखी सहेली आता वो भी सुनती हूँ,
0: जी
1: मंचाय जीत आता वो शनिवार रविवार वो भी सुनती हूँ।
0: जी जी बहुत अच्छा लगा।
1: अभी सुबह 6 बजे चालू करती है
0: जी
1: तो अपना काम भी हो जाता है, तो ये रेडियो भी सुनती हूँ।
0: दुर्गा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद का फिल्म का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
0: जी दुर्गा जी, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, और कॉल लगाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हम तुम्हें

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए
1: हाँ, मैं सिकंदरा से सुनीता उइके। हाँ
0: जी। सुनीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं आप?
1: मैं ग्रहणी हूँ दीदी।
0: सुनीता जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। माता पिता के संग बिताई हुई, दादी बाबा के संग बिताई हुई, तो कुछ यादें हैं जो आप बता सकती हैं?
1: हाँ दीदी, बचपन में तो हम बहुत थे, ये सब करते थे। मतलब वो खेलते थे, लगा हो जैसे डिब्बे वाला खेलते थे ना, तो
0: जी,
1: कबड्डी ये सब खेला करते थे। हाँ
0: जो सारे खेल होते हैं, लंगड़ी है या सिकड़ी है या रस्सी कूद है ना, इस टाइप के खेल।
1: रस्सी कूद है, हाँ छिपन छिपाई, ये सब खेला करते थे। अभी भी मैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी खेलती हूँ।
0: जी
1: छोटे हैं तो उनको कभी ज्यादा टीवी में देखना, आप चुप जाओ मैं आपको ढूंढती हूँ, ऐसा
0: बिल्कुल, अपने बच्चों के साथ आप उनको अपने समय में जो आप खेल खेला करती थी, वो बच्चों को बताइए कि टीवी बंद करो, मोबाइल हटाओ और अब मेरे साथ आके तुम लोग एक खेलो खेल। तो उससे क्या होगा, एक आपस में जो संबंध बनता है प्यार का बच्चों के बीच में, वो बहुत अच्छा
1: हाँ
0: बनेगा।
1: दीदी,
0: और दोस्त जैसा अगर आप बन के रहेंगी, उनके साथ खेलेंगी, इंजॉय करेंगी, तो वो बच्चे भी बहुत खुश होंगे, है ना?
1: हाँ दीदी दीदी दीदी, हम मेरे घर मोबाइल बहुत कम देखते हैं, बच्चे बस
0: जी
1: ज्यादा खेलते कूदते हैं।
0: सुनीता जी, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं, और उससे क्या होता है, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है।
1: हाँ जी, उनके साथ तो आराम तो की थी, मतलब कभी कभी बैट बॉल खेल लेती हूँ ऐसे।
0: बिल्कुल, आप थोड़ी देर क्या, आप तो एक नियम बना दो कि 1 घंटे हमारे साथ तुम लोग को खेलना है ना? तो आप भी एक्टिव रहेंगी और बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना?
1: हाँ
0: तो सुनीता जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे वाला गीत सुना था दीदी, चलो बुलाया आया है, माता ने बुलाया है।
0: जी सुनीता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं अहमदाबाद से जरीना बात कर रही हूँ जी।
0: जरीना जी, और बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं अच्छी हूँ। अहमदाबाद
0: अहमदाबाद का मौसम कैसा है इस समय?
1: का मौसम तो अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है जी।
0: अच्छा, और अपने बारे में और कुछ बताइए।
1: मैं स्टोर चलाती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा।
0: अच्छा जरीना जी, तो इसमें क्या क्या चीजें आप बनवाती हैं?
1: बनवाती नहीं हूँ, होलसेल मिलाती हूँ मुंबई से और यहाँ पे मार्केटिंग करती हूँ। हमारा जो नवरात्र आने वाला है ना, तो
0: जी
1: उसका सीजन चल रहा है। उसमें मैं बैंगल्स है, फिर
0: जी
1: नेकलेस है, वो सब लोग हम लाते हैं
0: जी
1: और उसको बिक्री करते हैं, स्टोर में रखते हैं।
0: क्या बात है, यानी कि सीजन आते ही बिजनेस बहुत तरक्की करता है ना?
1: जी। आप
0: जी
1: मंजरी जी बात कर रही हो ना?
0: हाँ, मैं मंजरी वर्मा बोल रही हूँ
1: जी,
0: जी।
1: बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।
0: चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा। जरीना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: वो गीत नहीं है बल्कि वो भजन है, दे अम्बे जगदम्बे, क्योंकि अभी नवरात्र आने वाला है ना,
0: जी जी जी जी
1: तो मैं वो गीत सुनना चाहूंगी।
0: जरीना जी, बिल्कुल, आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, और आपने कॉल किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं बबीता कुर्मी, जिला सागर।
0: बबीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, सागर के क्या हाल हैं?
1: बस मैम जी बढ़िया है। आप सुनाओ, आपकी मुंबई की क्या हाल है मैम?
0: मुंबई बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बबीता जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: पढ़ाई करते हैं दीदी, और घर में रहते हैं तो माता पिता का हाथ बटाते हैं। जैसे खेती किसानी होती है हम लोगों को यहाँ
0: जी
1: पे, तो
0: जी
1: दीदी उसमें अभी हम लोगों के यहाँ पे वो करता है सोयाबीन और उड़दा बज जाते हैं यहाँ पे उड़द। कभी आओ तो दीदी, यहाँ की मूंगफली है बहुत फेमस अर्जनी की।
0: क्या बात है। फिर देखिए, जब कभी मौका मिलेगा, ऐसा सौभाग्य होगा, तो जरूर आएंगे और जरूर खाएंगे वहां की मूंगफली। मूंगफली के साथ में जो नमक मिलता है उसका स्वाद भी अलग होता है ना।
1: हाँ दीदी, और दीदी देसी मूंगफली की तो बात ही अलग है दीदी। हम लोगों को यहाँ पे, वैसे तो दीदी बुंदेली भाषा जानती हो आप?
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए, बुंदेली में क्या कहना चाहती हैं आप?
1: तो बुंदेली में मतलब बोलती तो मूंगफली है जो हम लोगों को वो रहती है यहाँ पे, हर खेतों में लगती है दीदी।
0: जी,
1: यहाँ के दीदी जो बेर होते हैं अभी तो मतलब नहीं फले हैं, यहाँ पे फलने वाले हैं बस।
0: बेर जो उबाल के खाते हैं, छोटे वाले बेर होते ना, लाल लाल।
1: हाँ वो उबाल के दीदी, जब वो फटे ही, जब वो पक जाते हैं उनको तुरंत खाते दीदी, इतना अच्छा लगते हैं वो बेर।
0: जी। और बबीता जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आप बुंदेली में कोई गीत गुनगुना सकती हैं?
1: जी दीदी, बुंदेली में एक छोटा सा गाना है दीदी, बेटी के ऊपर से। बिटिया
0: सुनाइए।
1: को अगर बच्चे होने तो बहू

0: बनावे आज की बिटिया बहू काल की परसों माँ बन जाए। यहाँ पे दीदी ऐसे गाना गाए जाते हैं लोग भी।
1: नहीं, बहुत प्यारा सा गाना है बिटिया के बारे में कि बिटिया की क्या अहमियत होती है परिवार में।
0: दीदी, सबसे पहले तो आपके लिए और विविध भारती की पूरी टीम के लिए आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल, आपको भी हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बबीता जी, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आज?
0: दीदी सुहाग फिल्म का गाना सुनवा देना, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरो वाली।
1: बबीता जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। मुंबई का एसटीडी कोड है 022, फोन नंबर है 4002466 2, यानी 4002462। दूसरा नंबर है 2867 0288, यानी 2867 0288। तो बस हेलो सहेली में लगाइए ये नंबर्स और कीजिए अपनी दोस्त से बातें। प्रोग्राम हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। आप सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, कभी ना कभी आपकी कॉल लग जाएगी। जिन सखियों की कॉल आज लग गई है उनसे निवेदन है कि 2 महीने तक कॉल नहीं लगाएं। आज हेलो सहेली कार्यक्रम में सहयोग संपादन रहा झरना सोलंकी का और तकनीकी इंजीनियर समृद्धि नायक, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए अब मंजरी वर्मा को अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं।

0: जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश के सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
3: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है।
3: ना, बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर है ममता सिंह का।
2: अब तक आपने सुना आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करती हुई लॉन में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था, मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में। हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे। जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। सही मायनों में तो प्रणव सर जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या, छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती। बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन। वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठ कर कमरे में बंद हो गई थी। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना। एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के काम काज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं, अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब

की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। अब सुनिए आगे की कहानी।

जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। 12वीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था। सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला? अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही है। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का? मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या, सौम्या, सौम्या। मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने? तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है। तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी। मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

0: मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम मालचेस घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था।
1: कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं माँ? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना?
2: लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हाँ,
1: वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं।
2: वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना।
0: समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना।
1: समझ गई बच्ची, बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो।
0: चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी।
1: चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको, लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची?
0: जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाले मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी।
1: बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना।
2: हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग।
1: घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है।
2: पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर है ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना।
1: हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है।
2: तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी।
1: बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता।
0: दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली,
1: आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ, पर अब नहीं। मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती, क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर हैं आजकल।
2: ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना।
0: बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालचेस घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालचेस घाट की गगन छूती

ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोस ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थी। टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

0: अकेले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना घर वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है। जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सर्पीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले,
1: उस लंबू से सट सट कर थाली दे देकर इतना खींचे क्यों नहीं पोर रही थी तू, हैं?
0: विनोद भैया, दिव्या को जलती आंखों से लिलोरते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिलाकर

पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए थे। इस घर में ये वक्त लड़कियों के लिए बाहर से लौटने का नहीं है। छोटे भाई सोनू ने दरवाजा खोला और अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने में वो मशगूल हो गया। चाचा हाथ में रिमोट लिए टीवी के चैनल बदल रहे थे। टीवी बंद करते हुए उन्होंने दिव्या को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराध करके लौटी हो। कॉरिडोर पार करती हुई वो बेडरूम तक पहुंची भी नहीं थी कि चाचा की रौबदार आवाज ने कानों में चोट पहुंचाई। बेतरह थकी हुई दिव्या का मन कर रहा था कि चाचा की पुकार को अनसुना करके सीधे बिस्तर पर पड़ जाए, लेकिन चाचा की हैसियत इस घर में पापा से भी बढ़कर थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि चौल में इतनी लंबी जिंदगी बिताने के बाद जब से टावर में घर लेने का सपना पूरा हुआ तो घर की एक मुश्त रकम का इंतजाम चाचा ने किया था। लोन अमाउंट भी उनका ज्यादा था। घर खरीदने में पापा की पूंजी कम लगी थी, जबकि दिव्या 3 भाई बहन मिलाकर 5 लोग हैं और चाचा के परिवार में विनोद भैया, चाचा चाची, कुल मिलाकर 3 लोग। मतलब ये एक आदर्श संयुक्त परिवार था। दिव्या सिर झुकाकर अपराधी की तरह सामने सोफे पर बैठ गई। विनोद भैया की लगाई आग चाचा की जबान के जरिए घर में धधक रही थी। उनकी लाल आंखें शोले उगल रही थीं और उसमें वो जल रही थी। ऊपर से तो वो बुद्ध बनी थी, लेकिन उसके मन में विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ रहा था। दिव्या अपने आप से ही पूछ रही थी कि आखिर उसका दोष क्या है, जमाना कहां पहुंच गया है। स्त्रियां धरती के हर छोर पर पहुंच गई हैं, स्पेस तक में अपना परचम लहरा रही हैं। ये संकुचित सोच के चाचा लड़कों के साथ घूमने क्या चली गई, घर सिर पर उठाए हुए हैं। खुद तो चाची की सहेलियों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर रस ले लेकर बतियाते हैं। हाँ, लेकिन दिव्या इस घर की बेटी है और वो लड़कों के साथ घूमने गई तो गलत करार दिया गया और उसे चाचा से बेवजह मार भी खानी पड़ी। इस आदर्श परिवार में बड़े होकर भी बात बात में पिट जाना आम बात है और ये उनके संस्कार में शुमार है। विनोद भैया ने दिव्या और इरफान को लेकर अफसाना गढ़कर चाचा और पापा से कह सुनाया था, वो भी इस तरह जैसे दिव्या कई दोस्तों के साथ न गई हो बल्कि अकेले इरफान के साथ गई हो, जबकि इरफान भी अन्य लड़कों की तरह महज एक दोस्त था। मम्मी ने भी चाचा पापा के पंचम सुर में अपना मंद्र सप्तक का सुर मिला दिया था। दिव्या, ए दिव्या, लड़की हो, इरफान से मिलना जुलना कम करो, समझे कि नहीं। लड़की का चरित्र सफेद चादर की तरह होता है, एक छींटा भी दाग लगा देता है उसमें। तुम जानती हो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। उस दिन दिव्या का दिल दर्द से कराह रहा था, अनगिनत खरोंचे लगी थी। मालशेज घाट में देखे फूल मुरझा गए थे। बेचैन मन आंसुओं का झरना बन बहता रहा बहुत देर तक। कमरे का दरवाजा अंदर से उसने बंद कर लिया।

रोने के बाद मन हल्का हुआ तो दिव्या ने मोबाइल उठाया, फेसबुक पर मालशेज घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर तक चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही। इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी, जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन के मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निसंग पाया। डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन वो चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैला नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था। बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है, उसे सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। रायमा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती। वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी। समझ में आई बात?

दिव्या, ओ दिव्या, हाय हाय स्वीटहार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूं मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ड्रामा के रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओ अरे हाँ, अरे तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने? तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसी चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है, पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा पूछ तो सही, कौन है, पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है प्रणव सर। अनमनी से दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? चल ना चल। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा की स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी, और एक रीडिंग बहुत जरूरी है, अपने आप से ही वो गुफ्तगू करती है। आखिर यह चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये, फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है? क्यों क्यों घबरा रही हूं मैं? अगर अपनों से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है? आखिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या, साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना, समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से

ये जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहां से आएंगे? पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी। प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है। कहां से आएगी ये रकम? दिव्या का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है। अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है। अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी। लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं। ऐसे में वो या तो अपनी डायरी उठाती है या फिर खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से दूर तक देखती है।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर अंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी, लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? और किसके साथ रहोगी हैं? वहां न कोई नातेदार न रिश्तेदार,

हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन राइमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था, आंटी दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ राइमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना। मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगा मेरा, कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना? वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था, गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराये शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो उहापोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं, क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थीं। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदें चिपक गई थीं। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलेटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: वो बताएंगे फिल्म के शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोरोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: आकाशवाणी से है अमरावती केंद्र है FM बैंड 101.5 मेगाहर्ट्ज वर आणि प्रसार भारतीच्या न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲप वर श्रोतेहो सायंकाळचे 5 वाजतात। थोड्याच वेळात ऐकूया ठळक मराठी बातमीपत्र आकाशवाणी महाराष्ट्राच्या मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून।

जो मोहब्बत उनसे की है ख्याल उनका ही रहता है, हर रात तसव्वुर में दीदार उनका किया करते हैं हम। एक रोज वो हसीं शाम आ ही गई, खामोशियां अफसाने सुनाने लगी, और दीदार हुस्न से इश्क का होता चला गया। ये नशा भी क्या है कहते हैं जिसे मोहब्बत, जब देखिए एक नींद सी आंखों में भरी है।

क्या कहें दिल की धड़कनों पे एतबार आता नहीं, क्यों बेताबियों को करार आता नहीं। ये कौन खामोशियों में सदाएं दे रहा है, कोई रह रह के पुकारता हो जैसे। वक्त थम सा जाता है, सांसें रुक जाती हैं, धड़कनों में एक अजीब सी रवानी है। अब तो खुद से ही पूछते हैं कि कहीं ये प्यार तो नहीं।

नया गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। राज़ दिल कभी कभी अफसानों में बयान नहीं होता, कायनात भी ऐसी पाक मोहब्बत का एहतराम करती है। यादें मोहब्बत की होती हैं बड़ी शादाब, गुलिस्तां की तरह अफसानों में भी दोहराई जाती हैं। दो दिल जब धड़कते हैं एक दूसरे को सदाएं देते हैं मोहब्बत का नाम लेकर। गुम नींद की आगोश में होने नहीं देता, रातों को तसव्वुर तेरा सोने नहीं देता।

बेकरार वक्त है, संभाले न संभलता है, तो हमारे दिल को तड़पना है हर बहाने से। फिर एक बार देखा है हमने वो नाजनी चेहरा, वो बेख्याली का आलम, दिल के जज्बातों को निगाहों से बयां करने का वो पाक अंदाज और अदाओं में वो शोखी। दो घड़ी ठहरो कि दीदार अभी बाकी है, हुस्न इश्क की ये मुलाकात अभी बाकी है।

बातों बातों में रात ढलने को है, कुछ देर ही हुए उनसे मुलाकात हुई। वक्त जरा और थम जाए, निगाहों को यकीन तो आ जाए। हवाओं में ये एहसास घुलने तो दीजिए, नजरों से नजरों की मुलाकात होने तो दीजिए। कि हसरतों के तूफान दिल में अभी बाकी हैं, तो आज की रात यूं हो कि ठहर जाए। भीगे पैरहन की ये संदली खुशबू बिखर जाए, बूंदों के ये मोती बरस जाएं, हसरतें दिल की सांसों में सिमट जाएं।

गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में खुद्दार फिल्म के गाने के साथ। मजरू सुल्तानपुरी के हैं बोल और राजेश रोशन की है तर्ज।

के भालोबाशी और पंजाबी में कहते हैं तरी तो तेरे बिन मर जाना मैं तेनु प्यार कर।

वरना तेरी कसम खाता हूँ, सारी दुनिया के आगे जाने अभी पॉइजन खाता हूँ। जल्दी से हाँ कर दे वरना तेरी कसम खाता हूँ, सारी दुनिया के आगे जाने अभी पॉइजन खाता हूँ।

श्रोताओं, अगला गाना हमने लिया है सीता और गीता फिल्म से। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाजों में निकाह फिल्म का गाना। हसन कमाल हैं गीतकार और संगीतकार हैं रवि।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि अब मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज में विक्टोरिया नंबर 203 का गाना। परमा मलिक हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में जंजीर फिल्म का गाना। गुलशन बावरा हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा है कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन

0: बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपद, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये पाबंदी अगले आदेश तक लागू रहेगी। वहीं रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि स्टारलिंक, जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और यूटेलसैट वन वेब सहित 3 कंपनियों को सैटेलाइट संचार लाइसेंस दिए गए हैं। नई दिल्ली में श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार राजस्व साझाकरण के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और इथियोपिया की रणनीतिक साझेदारी साझा मूल्यों, समान आकांक्षाओं और विकासशील देशों के बीच ऐतिहासिक एकजुटता पर आधारित है। डॉक्टर जयशंकर ने इथियोपिया के विदेश मंत्री गिदियोन तिमोथियोस हेसेबोन के साथ आज राजधानी अदिस अबाबा में बैठक की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में जीत हासिल कर ली है। उधर तमिलनाडु की दारापुरम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीवीके ने जीत हासिल की है, जबकि मदुरंतकम सीट पर टीवीके आगे चल रही है। पुदुचेरी की तटान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया NR कांग्रेस ने जीत हासिल की। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 889 अंक बढ़कर 72,472 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 289 अंक की वृद्धि के साथ 22,520 पर पहुंच गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे, प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या।
2: आकाशवाणी नागपूर, हे मांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। नागपूर पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत भाजपा कार्यकर्ते रमण सेनाड यांच्यासह 16 उमेदवारांची माघार। केंद्रीय पथकाचा राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त भागात पाहणी दौरा सुरू। अमरावती विभागातील दुष्काळाचा आढावा, वाशिम जिल्ह्याची पाहणी। दुष्काळग्रस्त 36 तालुक्यांचं पुन्हा सर्वेक्षण। 18 तालुक्यांमध्ये 20% प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा शासन आदेश जारी। आणि भारतीय वंशाच्या नेवेनेथम नवी पिल्लई यांना यंदाचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर। आता सविस्तर बातम्या। नागपूर पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीत

0: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है किशोर कुमार की, फिल्म का नाम ब्लैकमेल।

0: इस गीत के साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: तराने नए पुराने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज के शेष कार्यक्रम इस प्रकार हैं। संध्या 6:35 से सुनिएगा संध्या रंजन, 6:45 से संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आज 9वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन। शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला प्रसारित किया जाएगा। 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा गुलदस्ता।

रात्रि 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा नाटिका आम्र मंजरी, लेखन राममूर्ति चतुर्वेदी का, निर्देशक रामा बावा। रात 8:15 से चित्रलोक, रात 9 बजे से आपके लिए, रात 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार रविंद्र जैन पर। रात 10 बजे से छाया गीत, आलेख एवं सर नेहा शर्मा का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। रात 10:30 से डलती जाए रात, और रात 11 बजे से सुनेगा रंग तरंग।

कल दिनांक 10 अक्टूबर के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। कल सुबह 6:05 से सुनिएगा वंदनवार, सुबह 6:35 से श्री रामचरित मानस गान, कल भाग 337 प्रसारित किया जाएगा। कल सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनिएगा संगीत सरिता श्रृंखला है शताब्दी की भक्ति रचनाएं, भाग 10 कल प्रसारित किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं गायक एवं संगीतकार शेखर सेन। कल सुबह 10 से भोले बिसरे गीत, कल सुबह सात बजे से, कृपया एक बार सुन लें फिर, कल सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के, सुबह 8:15 से त्रिवेणी आलेख एवं सर मंजरी वर्मा का प्रस्तुति अनुश्री पाठक की, सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 से सुनिएगा आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार गुरुदत्त पर, आलेख एवं स्वर ममता सिंह का। कल सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी के अंतर्गत ममता सिंह की कहानी यादों की तपिश का दूसरा भाग सुनेगा वाचन स्वर ममता सिंह का। कल सुबह 11 और रात्रि 11 से मैटनी शो के अंतर्गत वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से ममता सिंह की बातचीत सुनेगा प्रस्तुति जुबैर खान की। कल दिन में 12:05 से यादों की महफिल, दोपहर 1 से सुरीला सफर, दोपहर 2 से त्रिवेणी। कल दोपहर 2:30 से सदाबहार नगमे, दोपहर 3 से श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मनचाहे गीत, कल दोपहर 3:30 से सुनेगा नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक प्लास्टिक की घास का पहला भाग, लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। कल शाम 4 से पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत सुनेगा गौतम कृष्ण चंदानी, कास्टिंग डायरेक्टर से नेहा शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति तेज श्री कामले की। शाम 5 से छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं, शाम 5:30 से तराने नए पुराने। कल शाम 6:35 से संध्या रंजन सुनिएगा, शाम 7 से विशेष जयमाला, इसे प्रस्तुत कर रही संगीतकार उषा खन्ना, इसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनवाएंगे। इंद्रधनुष शाम 7:45 से इसके अंतर्गत जिज्ञासा सुनिएगा, रात्रि 8 से हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा सुनो कहानी के अंतर्गत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कंजन का दूसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। कल रात्रि 8:15 से चित्रलोक, रात्रि 9 से आपके लिए, रात्रि 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री रेखा पर, आलेख और स्वर अमरकांत दुबे का। रात्रि 10 से छाया गीत सुनिएगा, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और कल रात्रि 10:30 से ढलती जाए रात, और रात्रि 11 से मैटिनी शो। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन, सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं हनुमान अंश के इस गीत के साथ, श्रेयस धर्माधिकारी ने इसे गाया है।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम संध्या रंजन। लीजिए अब सुनिए वाणी जयराम और कुछ साथियों की आवाजों में गुटी फिल्म का ये गीत। गुलजार के हैं बोल और वसंत देसाई ने बनाई है तर्ज।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की नौवीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। एक समय था जब भजन से दिन की शुरुआत होती थी और एक ऐसा स्वर हम सुनते थे, वो है अनुराग सेन। और अनुराग सेन के नाम से एक भजन बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वृंदावन मत जाना। इस भजन को सुनते हैं तो हम सब अभिभूत होते हैं। अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, शेखर दादा से अनुरोध कर रहे हैं कि वो जो ओरे पथिकुआ तुम जइयो मत वृंदावन की ओर, अपनी इस रचना

0: बारे में बताइए और इस रचना प्रक्रिया के बारे में बताइए और सुना दीजिए प्लीज।
1: ये दरअसल मेरे पहले भजन के एल्बम से समर्पण उसका नाम था
0: जी
1: और उसमें से था। मैंने दरअसल विद्यापति जी का एक मैथिली में गीत सुना था और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। उसमें एक व्याज निंदा, व्याज स्तुति कहते हैं जब आप किसी की निंदा करते हैं
0: जी
1: जो साहित्यिक हो, तो उसको हम कहते हैं व्याज स्तुति, और जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसको हम कहते हैं व्याज निंदा। जैसे जब कोई पत्नी अपने पति से कहती है अरे आप तो बहुत खराब हैं, तो इसका मतलब है वो कहना चाह रही कि आप बहुत अच्छे हैं पर मैं खराब इसलिए बोल रही हूँ ताकि मेरी नजर ना लग जाए उन पर।
0: क्या बात है।
1: या हम किसी की तारीफ करते हैं उसमें बुराई छुपी होती है कि एक लड़का देर से आया तो टीचर कहता है कि सी द मोस्ट पंक्चुअल बॉय ऑफ द क्लास।
0: हाँ
1: एक्चुअली वो बोल तो रहे हैं कि पंक्चुअल है पर
0: हाँ
1: वो बता रहे हैं कि बेटा तुम पंक्चुअल नहीं हो, तुम 20 मिनट देर से आए।
0: जी
1: तो वैसे ही इस भजन में ये था कि वृंदावन के बाहर एक साधु बैठा हुआ है और हर एक वृंदावन जाने वाले से कह रहा है कि और कोई भी भूल करना पर वृंदावन मत कभी जाना,
0: जी
1: और अगर कभी चले गए तो कृष्ण से मित्रता ना करना, अगर मित्र भी हो गए तो फिर उनकी बांसुरी ना सुनना। तो इस तरह का ही वो पूरा
0: जी जी
1: प्रसंग है जो हर कड़ी में प्रश्न
0: जी
1: उछालता
0: जी
1: है। तो ये मैं आपको सुना रहा हूँ, इसमें राग मांड है जो हमारे राजस्थान की लोक परंपरा से निकल करके शास्त्रीय संगीत में आया है।

0: ऐसे लग रहा है कि मंत्रमुग्ध कर दिया पूरे विविध भारती के स्टूडियो को और यहाँ मौजूद लोगों को। शेखर दादा, अब बताइए इस कड़ी में
1: मैं
0: और
1: चाह
0: क्या
1: रहा हूँ कि
0: सुनूंगा?
1: एक और महान गायक जिनको हम मन्ना दा के नाम से जानते हैं,
0: जी
1: एक्चुअली उनका भी नाम मन्ना दा जो है, ये उनका घर का नाम है मन्ना, क्योंकि बंगला में इस तरह के नाम मन्ना, जैसे हमारे यहाँ मुन्ना कहते हैं, उस तरह का नाम है। उनका जो मूल नाम था वो था प्रबोध चंद्र डे,
0: जी जी
1: और मन्ना दा के नाम से या मन्ना डे के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। और उनकी एक रचना मैं चाहता हूँ, फिल्म वसंत बहार की आप सुने, बहुत ही सुंदर, भय भंजना वंदना सुन हमारी।

0: अब इसके बाद दादा क्या सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं?
1: मैं चाह रहा था कि जो भक्ति संगीत में एक और अद्भुत परंपरा है
0: जी,
1: और वो है प्रार्थना की। और इसके लिए जो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास है वो भी एक अमर गीत है, 1957 की एक फिल्म दो आंखें 12 हाथ, और उसमें लता जी और साथियों के स्वर में ये एक अमर रचना है, वी शांताराम जी की फिल्म, भरत व्यास जी के शब्द और वसंत देसाई जी का संगीत। मैं चाहूंगा हम लोग एक बार फिर से इस प्रार्थना में अपने भी स्वर जोड़ लें
0: जी।
1: ऐ मालिक तेरे बंदे हम,

0: अब इस गीत के बाद संगीत सरिता की इस कड़ी को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत करने अरिजीत सिंह की आवाज में ओ रोमियो फिल्म के गाने के साथ। गुलजार के हैं बोल और तर्ज बनाई है विशाल भारद्वाज ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मीत ब्रदर्स और खुशबू की आवाज़ों में तेरा यार हूँ मैं, इस फिल्म का गाना। लीजिए अब सुनिए तेरा क्या होगा लवली, इस फिल्म का गाना। इसे गाया है देसी मदाना, रुचिका चौहान और नकश अजीज ने, इरशाद काबिल के बोल और अमित त्रिवेदी की है तर्ज़।

0: व्याख्यान है।
1: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

0: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में पिंटू की पप्पी। इस फिल्म का गाना रमन रघुवंशी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं डॉक्टर नीरज और सोनी केसी।
1: सजना

लीजिए, अब सुनिए कहानीकार का लिखा हुआ और आशीष छाबरा का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं रागिनी टंडन और आशीष छाबरा की। फिल्म का नाम बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के चित्रलोक कार्यक्रम के अंत में सुनिए जावेद अली और मधुपंती बाख्शी की आवाजों में पुष्पा 2 फिल्म का ये गाना।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नविपिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने एक सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम

0: से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपद क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाण परम कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि परम कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परम H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। परम आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति JD Vance की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत

0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
1: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं, इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल है। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
2: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूर संचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
3: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
4: सेमीकंडक्टर जर्नी,
5: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूर संचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
4: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
2: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
6: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानव अधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में

0: आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने तमिलनाडु में उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में तत्तान चावड़ी सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। Headlines. BJP wins assembly polls for Rajinagar and Nandigram constituencies in West Bengal. In Tamil Nadu, ruling TVK wins assembly by polls for Madurantakam and Dharapuram seats. All India NR Congress retains Thattan Chowri assembly constituency in Puducherry. BJP also bags Assam's Nogaon Lok Sabha seat. Delhi police declines permission for protest at Jantar Mantar tomorrow. 57 metro stations in Delhi to remain closed till tomorrow due to security reasons. All mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. tomorrow stands cancelled at source stations. India stresses the steps announced by US regarding permanent labor certification program do not advance shared ambitions of both countries. South African jurist of Indian origin Navneetham Navi Pillai wins Nobel Peace Prize for her contributions to promoting peace and international law. And in cricket, second T20 international between India and West Indies underway in Ranchi. The BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal Nandigram and East Mednipur district and Rajinagar and Murshidabad district where by-elections were held. In Nandigram, BJP candidate Hasi Rani Rath defeated her nearest rival, Congress candidate Milan Pradhan, by a margin of over 1,22,000 votes. In Rajinagar, BJP candidate Shakarav Sarkar wrested the seat from the Aam Janata Union Party, or AJUP, securing 1,29,914 votes. He defeated his nearest rival, Ghulam Nabi Azad, son of AJUP chief Humayun Kabir, by a margin of over 75,000 votes. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal Assembly has risen to 209 seats. In Puducherry, All India NR Congress candidate Ashok Anand has secured a comfortable victory with a margin of 8,482 votes for Thattanam Chowri Assembly constituency by election. The seat was vacated by Puducherry Chief Minister N. Rangasamy. In Tamil Nadu, the ruling Tamilaga Vetri Karagam TVK has won the assembly by polls for Madurantakam and Dharapuram seats today. In Madurantakam, TVK candidate K. Maragatham Kumare

0: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में मेरे सनम फिल्म का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी है गीतकार और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: हस्ती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक के हुआ।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों में रंग है भारतीयता का। वाद्यों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग सुनाई देता है रविंद्र जैन की धुनों में। गीत की भावभूमि चाहे जो हो, रविंद्र जैन का संगीत उस मूड और दृश्य के साथ न्याय करता है। इसीलिए गीत को पर्दे पर न देखें तो भी उसे सुनते हुए हम उसका भरपूर आनंद ले पाते।

28 फरवरी सन 1944 को अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन को युवावस्था से ही संगीत में रुचि थी और वो भक्ति संगीत की रचनाएं गाया करते थे। संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने ली पंडित जी एल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम से। रविंद्र जैन की रचनात्मक सक्रियता का एक लंबा समय बीता कोलकाता में और फिर संयोग बना मुंबई आने का। सन 1972 के जनवरी महीने में रविंद्र जैन ने बतौर शुरुआत की स्वतंत्र रूप से संगीत देने की। फिल्म जगत में अपने करियर का पहला गीत उन्होंने महान गायक मोहम्मद रफी के स्वर में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म रिलीज न हो पाई। खैर, नसीब का पासा पलटा और 80 के दशक में रविंद्र जैन को उन फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला जो कामयाब होने के साथ साथ बेहद लोकप्रिय भी हुई। उस दौर की ये मशहूर फिल्में हैं चोर मचाए शोर।

रविंद्र जैन की प्रतिभा इस मायने में दूसरे संगीतकारों से अलग है क्योंकि रविंद्र जैन फिल्मों में संगीत देने के साथ साथ गीत भी लिखते रहे और उन्होंने कई गीत गाए।

0: जाए।
1: रविंद्र जैन संगीत के मर्मज्ञ तो थे ही, भाषा और व्याकरण पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उनके संगीत में विशुद्ध भारतीय रंग था, इसलिए उसमें भारतीयता की आत्मा झलकती है। रविंद्र जैन उर्दू शायरी और कविता के गहरे जानकार थे। एक उम्दा संगीतकार होने के लिए ये जरूरी भी है। वो भारत की सांस्कृतिक धार्मिक लोक परंपरा की गहरी समझ रखते थे, इसीलिए विषयानुकूल संगीत सृजन करने में उन्हें महारत हासिल थी।

0: आशियां।
1: रविंद्र जैन की कई धुनें ऐसी हैं जो जब भी सुनाई पड़ती हैं अपने जादुई असर से हमें बांध लेती हैं। उनके शब्दों में, गीतों में कभी भी ओछापन या सस्ती तुकबंदी नहीं रही। रविंद्र जैन किसी भाव की मर्यादा क्या होगी इसके प्रति सजग थे। उनके गीतों में लालित्य है, भाषा और भावों का सौंदर्य है, और सौंदर्य है आंचलिकता का।

0: व्याकरण की मर्यादा तोड़ते, पहचान के लिए छटपटाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भौंडे फूहड़ प्रयोगों में सस्ती तुकबंदियों में करहते, शिष्ट से अशिष्ट होते, चीखते चिल्लाते, शोर करते और स्मृतियों से स्खलित होते गीतों की भीड़ में रविंद्र जैन के रस भरे भावपूर्ण अर्थपूर्ण गीत लगातार हमें मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं।
1: ओ ठंडे ठंडे पानी से

रविंद्र जैन ने एक ओर जहां फिल्म जगत के प्रतिष्ठित बैनर राजश्री की कई स्तरीय फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा, तो वहीं उन्होंने शोमैन राज कपूर के प्रतिष्ठित बैनर की फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

रविंद्र जैन की संगीत प्रतिभा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी परिधि और विराट थी। रविंद्र जैन ने गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, भोजपुरी, बांग्ला, उड़िया, राजस्थानी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी संगीत दिया। इससे पता चलता है कि क्या थी उनकी प्रतिभा की ऊंचाई। हिंदी सिने संगीत को गायक येसुदास का अद्भुत स्वर मिला रविंद्र जैन जी के ही कारण। रविंद्र जैन गायक येसुदास को भारत का स्वर कहते थे। येसुदास जी ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में गाए कुछ बेहद लोकप्रिय और यादगार की

0: आज से पहले।
1: संगीत और अपना काम रविंद्र जैन के लिए पूजा की तरह था। फिल्म सौदागर के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इस हृदय विदारक समाचार के मिलने के बाद भी रविंद्र जैन पूरे समर्पण से रिकॉर्डिंग करते रहे। भीतर से बहुत विचलित, किंतु बाहर से वो यूं प्रदर्शित करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिल्म सौदागर रविंद्र जैन के सुरीले संगीत का एक और उदाहरण है।

फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने कई गैर फिल्मी रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया। इनमें भक्ति रचनाओं के अलावा कई दिलकश गजलें भी शामिल हैं। रविंद्र जैन ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अनेक लोकप्रिय धारावाहिकों को भी अपने संगीत से संवारा। इनमें से कुछ के नाम हैं अलिफ लैला, इतिहास की प्रेम कहानियां, लवकुश, दादा दादी की कहानियां और रामायण।

0: कुछ प्रसिद्ध बैले कृतियां हैं महालक्ष्मी, दुर्गा, नृत्यमालिका, रामायण, कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण।
1: रविंद्र जैन के संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं, नदिया के पार, सौदागर, चित्तचोर, गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तपस्या, पहेली, हिना, राम तेरी गंगा मैली, पति पत्नी और वो, फकीरा और विवाह।

एक टेलीविजन चैनल के संगीत कार्यक्रम में उन्होंने महागुरु का दायित्व भी संभाला था। उनकी शायरी का एक दीवान भी प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था उजालों का सिलसिला। उनकी जीवनी का शीर्षक है सुनहरे पल। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से साहित्य और संगीत में अपने अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी जीवन संगिनी बनकर आई दिव्या जैन। रविंद्र जैन जी के सुपुत्र का नाम है आयुष्मान। 9 अक्टूबर सन 2015 को संगीत के साधक रविंद्र जैन ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रविंद्र जैन सदैव याद किए जाएंगे अपने मधुर संगीत के लिए, मीठे गीतों के लिए।

आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन पर केंद्रित ये कार्यक्रम। प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोरोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिरों में आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल की कलम से जब निकलते हैं चाहतों के किस्से, तो वो बातें छपती हैं दिल की गहराइयों में। अरमानों के बादल रचते हैं नित नई इबारत प्रेम की। मन डूबने लगता है एहसासों की गहराइयों में। उमड़ते हैं जज्बातों के सैलाब और नजर आता है यादों में बस वही चेहरा।

की मासूम चाहतों में क्या कुछ किए जाते हैं हम, लिखते हैं तेरा नाम कभी कभी छुपाते हैं हम। दिल की बातों को कह पाना कहाँ आसान रहा, लिखने लगूं तो शब्द भी पढ़ते हैं कम। जो कहना था तुमसे मिलकर हमें, वो जज्बात कागज में कहाँ समाएंगे। कभी मिलो जो ख्वाबों में तुम, हर वो बात तुम्हें बताएंगे।

मिली जो प्यार की पहली पाती, हुए मेरे पैर हवा अब। कभी उड़ती हूँ यहाँ, कभी उड़ती हूँ वहाँ, कदमों ने मेरे छू लिया जैसे आसमां। न होश खुद का न खबर जमाने की, कहने लगी सखियां मेरी हुई तो उस दीवाने की। इश्क मोहब्बत प्रेम की पींगे खेलने लगी हैं दिल से, अब राज ये छुपाना मुश्किल हुआ है इस दिल से।

सुन रहे हैं छाया गीत। भेज तो दिया दिल का पैगाम उन्हें, न जाने क्या लिखा इस दिले नादान ने। अब घबराते हैं अरमान, डरते हैं खुदा जान उन्हें। प्रेम में नाराजगी न मिले कहीं अंजाम हमें। ये प्रेम की बातें लिखना कहाँ आसान रहा, जब तक न मिले जवाब उनका दिल रहे परेशान मेरा।

आया है खत तो देंगे जवाब भी हम, कैसे कह दें किसी अनजान से अपने दिल की ये बात हम। कहनी तो थी उनसे लाखों बातें दिल की, मगर किसी और से कहते वो बातें झुकती हैं शर्म से नजर। लिखा था मेरे सांवरिया ने, जानते हैं वो मेरे दिल की हर बात। लिखा सलाम, छुपाए हैं उसमें ही दिल के सारे जज्बात।

लिख तो दिया था सलाम खत में छुपा कर दिल के जज्बात, वो क्या समझेंगे मेरे विरह की ये रात, क्या जान जाएंगे मेरी उलझी लटों की उलझने, मिलेंगी आंखों की कोर में छुपी उनके इंतजार की वो रात, न जाने कब आएंगे साजन इस गली, उनके बिना न दिन भले लगे न लगी भली रात।

0: हमसे खता हो जाए, ऐसे तो न देखूं।
1: सेहत के कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए।

0: डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार। अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है, तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम कोरोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं, जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
4: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
4: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम में सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायवेद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश